FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है मंगलवार, शक संवत 1948, अश्विन माह 21वीं तिथि, तदनुसार 13 अक्टूबर सन 2026। 5:58:40 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी हमारे कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को ही अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन

0: राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदनवार में सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि बुद्धिमान काम करने के पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। झरोखा में अब जानकारी देते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 भोले बिसरे गीत। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, फिल्मों से लिए गए युगल गाने। 7:00 हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:00। 8:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम त्रिवेणी। 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। 8 प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:30 पर। अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स इस प्रोग्राम में।

फोन इन प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। आज इस कार्यक्रम में जो टॉपिक है वो रहेगा दिल की सेहत, समस्याएं और निदान। इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देंगे और दिल से जुड़ी जानकारी देंगे डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। दिन में 11 बजे प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर सुनिए हमारा लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रा दे।

दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। दोपहर 1:05 पर प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में, 1:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30। शाम 6:30 पर अमृत बानी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने।

10:30 मिनट पर मुख्य प्रादेशिक समाचार और उसके बाद सुरसांझ कार्यक्रम में कुछ पंजाबी गाने। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम में फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल। रात 9:30 पर आज के फनकार और 10 बजे छाया गीत। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

श्री राम की सेना के चुने हुए योद्धा बारी बारी से रावण से युद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में रावण के साथ विभीषण और हनुमान के युद्ध का वर्णन है। रावण को विभीषण पर शक्तिबाण छोड़ते हुए देख श्री राम ने उन्हें पीछे हटाकर उसे अपनी छाती पर ले लिया। क्षण भर को उन्हें मूर्छित होता देख विभीषण ने दुगने क्रोध के साथ गदा प्रहार से रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दसों मुखों से रक्त प्रवाहित होने लगा। दोनों भाई फिर मल्ल युद्ध में भिड़ गए। विभीषण को थकते देखकर हनुमान बीच में आ कूदे। उन्होंने रावण के रथ घोड़ों तथा सारथी सबका संहार कर दिया। लेकिन मायावी रावण ने तब अन्य युक्ति अपनाई। दोनों वीर पृथ्वी से आकाश तक एक दूसरे से गुंथ गए।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं शेखर दादा आप अपनी रचना संसार के कुछ मोती हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। अपनी कुछ रचना का जिक्र कीजिए और कोई रचना आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
2: मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे HMB ने साइन तो किया था गजल गाने के लिए, पर मेरी एक भी गजल रिकॉर्ड नहीं हुई और मेरे करीब 280 एल्बम्स भजन और इस तरह के रामायण और भगवद गीता इस तरह के 280 एल्बम्स हो चुके हैं। और अमूमन अधिकांश गायक गायिकाओं ने मेरे लिए भजन गाए हैं, पर सबसे अधिक जो काम हुआ है वो मेरा अनुराधा पौडवाल जी के साथ, 100 से भी अधिक CDs उनके साथ मैंने किए हैं। नितिन मुकेश जी के साथ 5 CDs का काम किया है। उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, ऐसे बहुत सारे गायक गायिकाओं के साथ मैंने किया है। और मैं दरअसल ये चाहता था कि जो मेरे मन का हो और जो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं वही काम मैं करूं
1: जी।
2: तो उसमें मुझे लगा कि अगर मैं प्राइवेट एल्बम करूंगा वहीं पर वो संभावना बन सकती है कि मैं अपने मन की रचनाएं रिकॉर्ड करूं, कंपोज करूं। क्योंकि जब आप फिल्मों के लिए काम करते हैं तो आपको दूसरे के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है
1: जी,
2: कहानी ये है, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, ये सब। तो

0: उनका भूत तो मेरा पहले एक साल में ही उतर गया। मैंने कहा ये मेरे मतलब की लाइन नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है, पर मुझे लगा कि मैं प्राइवेट एल्बम्स का काम करूं, तो वो मेरे जीवन का एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। और मैं आपको आज सुनाना चाह रहा हूं मीराबाई का एक भजन
1: जी,
0: जो मीरा नाम के एल्बम से हमने रिलीज भी किया था, और वो गाया था अनुराधा पोडवाल जी ने
1: जी।
0: और उसमें जो स्वर रचना थी वो कलावती और जनसन मोहिनी के आसपास मैंने रखी थी। दरअसल ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप रचना बनाते हैं ना, तब राग ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि राग जो होता है स्वर प्रधान होता है, भजन या गजल या गीत वो शब्द प्रधान होता है, तो जहाँ शब्द प्रधान होगा वहां पर स्वर थोड़े पीछे आ जाते हैं। ये अनुराधा जी की आवाज में भी आप सुनाइएगा, पर मैं पहले गाता हूँ क्योंकि मेरी बहुत प्रिय रचना है
1: जी। जी जरूर सुनाएं।

0: इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या सुनवा रहे हैं।
1: हमारे यहाँ माँ के भजन जो है वो थोड़े जयकारा
0: कीर्तन के
1: शेरा वालिदा और उस तरह के कि माँ तू आजा तेरे लिए हलवा बनाया है या माँ ने टेलीफोन किया है।

0: तरह के गाने होते हैं। पर इसके बिल्कुल विपरीत बंगाल में जो श्यामा संगीत की परंपरा है उसमें माँ के लिए आप वैसे ही गाने गाते हैं जैसे आप अपनी माँ को गाकर सुना रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: और ये भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि केवल केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देवी का रूप पूजा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा पूरे संसार की किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म या किसी भी सभ्यता में माँ को वो स्थान नहीं मिला है जो हमारे यहाँ है। तो एक बार मुझे कहा गया कि भाई आप बनाइए। मैंने कहा भाई देखिए आपके यहाँ जिस तरह के भजन बनते हैं इस समय उस तरह के भजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आप कहें कि जैसे बंगला में बनते हैं वैसा कुछ बनाइए तो मैंने कहा उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो उस समय सारे जो भजन बने वो बहुत ही अद्भुत बने माँ के लिए
1: जी।
0: तो मैं आपको उसमें से एक सुनाता हूँ। और ये मुझे केवल एक दिन में मैंने 10 भजन लिखे स्वरबद्ध किए और अगले दिन उसको रिकॉर्ड कर दिया।
1: क्या बात है।
0: और ये शक्ति नाम से या माँ काली के भजन के नाम से रिलीज हुआ। इसमें मेरा भाव था कि मैं माँ की अगर अर्चना करता हूँ मैं माँ के आंखों में कितना स्थान रखता हूँ वो थोड़ी सी जगह मेरी होगी
1: क्योंकि
0: सभी तो माँ के भक्त हैं सभी माँ के संतान हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे नैनों में ज्योति आंखों में जो ज्योति होती बहुत छोटे से हिस्से में होती
1: जी जी।
0: सीप में मोती बहुत बड़ा सीप होता है मोती छोटे से स्थान से वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती
1: है
0: ज्यादा नीचे है। मुझे मालूम है कि और भी संतानें हैं उनको भी आप स्थान दीजिए पर थोड़ी सी जगह ऊंची दीजिए। ये भाव है उसमें
1: जी सुनाए।

0: वाह, बहुत अद्भुत। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसके आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और आज की ये अंतिम कड़ी है। शेखर दादा, हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप वादा कीजिए कि अगली बार जब आएंगे विविध भारती के स्टूडियो में तो अपनी रचनाओं के बारे में बातें करेंगे, अपने रचना संसार को आप यहाँ पर समाहित करेंगे।
1: सबसे पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य कि विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए, जो मैं और मेरी पत्नी नित्य सुनते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही हमारा प्रिय कार्यक्रम है। और सुबह उठ करके मेरी पत्नी विविध भारती हर दिन लगा देती हैं।
0: क्या बात है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार कुछ न कुछ मिलता है।

0: जी जी
1: जो दूसरे किसी कार्यक्रम में नहीं हो पाता वो संगीत सरिता में मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो अपने श्रोताओं को भी मैं कहूँगा कि आप और अधिक गंभीरता से संगीत सरिता सुने, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर विविद भारती आता है और ये बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को जाने, अपने महान कलाकारों को जाने, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। तो आप सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और विविध भारती ने ये अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत आभार। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और तबले पर साथ दिया आशीष बिश्वास जी ने, आपने बहुत ही कुशलता से संगत की और हम सबको बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए। और हारमोनियम पर संगत स्वयं शेखर सेन दादा ने किया। और अब हम सभी श्रोताओं से ले रहे हैं अनुमति। आप सभी को नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज हमने सुनी इस श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष बिश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। संगीत सरिता की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/bbsmumbai। इस पते पर जाकर अपने कमेंट से हमें अपने विचार साझा कीजिएगा। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
7: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
8: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं आज है अभिनेता अशोक कुमार की जन्म जयंती और फिल्मकार गायक अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि। तो इन्हीं से संबंधित गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे।
2: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ आओ आओ आओ। ये कैसे चले, लाओ पैसे चले। आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े। ला ला ला ला ला, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में। तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में। हाँ, तुम भी आओ ना।
3: मेरे पास पैसा नहीं है।
2: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ। जब पहले

0: तीन, फिर तीन, फिर दूसरे तीन। तुम भी आ, पहले लाइन में चले आ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
1: नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
1: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक बीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक बी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
1: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक जीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
1: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
1: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15-15, दूना 30-45, 64, 75, 96, 97, 85, 90, 35, गले में रस्सा।
3: अशोक कुमार और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से ये गीत। गुलजार ने इसे लिखा, वसंत देसाई का संगीत।

0: झूला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में। कवि प्रदीप ने इसे लिखा, सरस्वती देवी का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेता अशोक कुमार और फिल्मकार किशोर कुमार के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
2: नहीं यार मैं नहीं लोना
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
4: कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का

0: एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: CAT कैट, कैट माने बिल्ली।
2: RAT रैट, रैट माने चूहा।

GOAT, goat, goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

दिल्ली का ठग फन से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज फिल्मकार गायक अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनकी आवाज और उनकी फिल्म से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

Left, right, left, right, right, turn. Left, right, about, turn.

बहार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मुनीम जी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरती
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता गायक फिल्मकार किशोर कुमार की आवाज से सजे गीत उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं उन्हें।

0: किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में अपना पन फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, उनसे होगी

0: संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें। खट्टा मीठा फिल्म के गीत में आपने सुनी गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी।

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें खट्टा मीठा फिल्म के गीत में आपने सुनी गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: किशोर कुमार की याद का दिन।

0: किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज जानी दुश्मन फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और इस कार्यक्रम में याद कर रहे हैं किशोर कुमार को।

जमीन आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें अनजान के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जख्मी फिल्म से ये गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें गौहर कानपुरी के बोल बप्पी लाहिड़ी का संगीत

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में जख्मी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गौहर कानपुरी ने इसे लिखा, बप्पी लाहिरी ने संगीत से सजाया। और इसके साथ ही आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्य

0: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
4: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत

0: भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
0: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भशरू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलन

0: के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। तीन नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर। जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत। 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बस कुछ ही पलों के बाद
1: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
2: एसबीआई देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। एसबीआई, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स समाधान दीदी।
5: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
6: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
7: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
6: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
7: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
6: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
7: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।

खेले हम जी जान से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सिने सिंगर्स एसोसिएशन कोरस ग्रुप की आवाज जावेद अख्तर के बोल सोहिल सेन का संगीत कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार, सुमित कुमार और विशाल ददलानी की आवाजों में बचना ए हसीनो फिल्म का ये गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसका मूल गीत लिखा और रैप वाला जो लिरिक्स है वो लिखा है विशाल ददलानी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: सोना मोहापात्रा की आवाज में आप सुन रहे थे फुकरे फिल्म से ये गीत, जो कि एक लोकगीत है जिसे अडेप्ट किया मुन्ना धीमन ने राम संपत का संकेत। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के ठीक बाद 9:30 बजे यानी 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार किशोर कुमार पर, और 10 बजे से आप सुन सकते हैं सेहत नामा का पुनः प्रसारण, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। और अभी वक्त है चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ, नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
5: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशालदलाई, नक्स अजीज और प्रीतम की आवाजों में बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत आपने सुना। मयूरपुरी ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। और क्या आप भी सेल्फी लेते हैं? अगर हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि सेल्फी लेने के कारण आप खुद को ज्यादा देखते हैं और खुद को ज्यादा स्वीकार भी करने लगते हैं। लेकिन अगर सेल्फी लेने के बाद आप उस सेल्फी को देखकर खुद में मीन मेक निकालते हैं तो असली परेशानी यहाँ शुरू होती है। कैसी परेशानी भी बताएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है परेशानी जानने की। अभी तो आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में कपूर एंड सन्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अभिरुचि चंद का लिखा ये गीत अमाल मलिक ने संगीत से सजाया।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हमने बात की थी एक परेशानी की। वो परेशानी ये नहीं थी कि सेल्फी ली जाती है बार बार, बल्कि वो परेशानी ये थी कि सेल्फी लेने के बाद खुद को देखकर हम इतना मीन मेक निकालते हैं खुद में। कई बार ऐसा कहा जाता है कि सेल्फी जो लेते हैं वो बड़े आत्ममुग्ध होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। क्योंकि परेशानी तो असली ये है कि हम अपनी हर बात में जब आलोचना करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या कहता है इस पर हमारा दिमाग उतना ध्यान नहीं देता जितना कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं उसका असर हम पर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को देखकर ही खुद की कमियों को बार बार बार बार कहते रहते हैं। तो कहीं आपके अंदर भी तो ये आदत नहीं कि आप अपनी कमी लगातार निकालते रहते हैं, लगातार अपने बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं खुद की? अगर है तो कोई बात नहीं, ये आदत भी सुधारी जा सकती है।

0: कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

Tum ta, ta dum ta dum ta dum ta.

0: तनिष्का सांघवी और साथियों की आवाज में हिंदी मीडियम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, कुमार के बोल, सचिन जिगर का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे हैं खुद की कमी खामी और निकालने की जो बुरी आदत होती है, खुद की बुराई करने की आदत होती है, ये क्यों होती है एक इंसान में? उसे लगता है कि अपने अंदर हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन लगातार अगर हम अपने साथ ऐसा करते हैं, लगातार खुद की बुराई करते रहते हैं, खुद में मीन मेक निकालते रहते हैं, तो हम अपनी कोई मदद नहीं कर रहे होते, हम अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद को हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और खुद को हम दबा रहे होते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर जब भी हमारे मन में, क्योंकि एक आदत है तो इतनी जल्दी तो ये आदत जा नहीं सकती, अगर हम कहें कि आज के बाद से हम अपनी बुराई नहीं करेंगे तो ये आदत भी जा नहीं सकती तुरंत। तो जब भी अपने मन में कोई ऐसी बात आए कि भाई देखो ये मैं तो अच्छे नहीं दिख रहा हूँ, या देखो मेरी तो यही आदत है, या तो मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, मैं हमेशा देर से आता हूँ, इस तरह की जो बुरी बातें हम अपने बारे में बोलते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी विचार जब हमारे मन में आए तो उसे बस नहीं बोलेंगे, मत सोचिए, क्योंकि आपने सोच तो लिया है तो असर तो आप पर होने ही वाला है। तो उन कमियों को दूर करने का कोई तरीका तो होगा आपकी नज़र में, कि अगर देर से जाता हूं तो आप सोचेंगे कि नहीं आज मुझे जल्दी जाना है, तो इस तरह का कोई जो एक तरीका हो, कोई जिससे उन कमियों को दूर कर सकते हैं, वो आप खुद को बताएं। तो अगर आप ये खुद के बारे में बोलने लगेंगे तो इससे आप खुद को नेगेटिविटी नहीं देंगे बल्कि सकारात्मक विचार देंगे और बदलाव भी इसी तरह से सकारात्मक होगा। और एक काम आप कर सकते हैं कि रोजाना आईने के सामने खड़े होकर के कम से कम अपने बारे में 3 अच्छी बातें तो बोलिए ही, यानी कि अपनी तारीफ कीजिए। भाई अपनी तारीफ में कैसे शर्म,

निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रा निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बाघड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी

0: हीरो सुनो,
1: तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप ना पैगी, मेरी कितनी इंची नाक है, तेरी सांसे अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी,
2: शमशान चारों खाने चित कर देगी।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आप सुन रहे थे। प्रीतम के संगीत के साथ रफ्तार और साथियों की आवाजें दंगल फिल्म के इस गीत में। और अगर आपके मन में भी दंगल मचा हुआ है कि आप अपनी क्या तारीफ करेंगे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी तारीफ में आप क्या कहेंगे, तो कोई बात नहीं, ये गाना आपके लिए।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आप अपनी तारीफ कीजिए, तब तक हम आते हैं एक अंतराल लेकर।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: विशाल ददलानी की आवाज में शेफ फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। अंकुर तिवारी ने इसे लिखा, रघु दीक्षित का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

हृदय गट्टानी और की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत बैंजो फिल्म के इस गीत में। और जैसे कि हमने बात की कि हम अपनी खुद की बुराइयां ना करें, अपनी तारीफ करें और जो कमियां हमें खुद में दिखती हैं उन्हें स्वीकार कीजिए, देखिए, लेकिन जहां वाकई कमी हो उसे ही मानिए और स्वीकार कीजिए। और सिर्फ मानने और स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद को अगर हम बदल ही नहीं रहे, सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो रोज खुद को एक एक कदम आगे बढ़ाइए, सकारात्मकता की सीढ़ी पर चढ़ाइए और खुद को प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और ये करते हुए आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। अगला प्रोग्राम आज का अखबार।
2: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
5: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: आज का अखबार।
1: नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आपसे लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। लेकिन पहले आज के दिन की बात करते हैं। नवरात्रों का पावन जो है ये सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह में माता रानी की पूजा अर्चना में भक्तजन लीन हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आज माँ चंद्र घंटा की आराधना की जा रही है, जप तप किया जा रहा है। चंद्रमा शांति और घंटा नाद का प्रतीक है। चंद्र घंटा देवी आराध्य शक्ति है। माँ चंद्र घंटा नाद के साथ शांति का संदेश देती है। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी।

आज का अखबार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अपने रेडियो सेट पर आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं। इसके साथ साथ प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ उपलब्ध है।

अब एक नजर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल के साथ साथ कारोबार क्षेत्र पर एक नजर। मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन, मार्च निकाला, फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, राहुल गांधी, खड़गे और अखिलेश समेत 11 नेताओं ने संयुक्त रूप से दी याचिका, एसआई रोकने की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन पाबंदियां मेरा नहीं, कानून व्यवस्था का मामला। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए फॉर्म 6 को ना मंजूरी ना ही खारिज। तैंतीस साल बाद जंतर मंतर धरना स्थल की सूची से बाहर, अब यहां प्रदर्शन नहीं होंगे। 3 नए स्थल चिन्हित किए गए हैं, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान। महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद, हरियाणा के महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की नई राज्यपाल। दुश्मन की पनडुब्बियों का काल मंगरोल, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, नौसेना में शामिल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अपदस्थ प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद इको इजाम पर 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, केस। खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54% पहुंची, ठगी के डर से 72% भारतीयों ने बदला इंटरनेट का इस्तेमाल करने का तरीका। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बनेगा कार विनिर्माण का वैश्विक केंद्र। ये कारोबार जगत से जुड़ी खबरें हैं। म्यूचुअल फंड निवेश में 31% का उछाल आया है, एसआईपी सार्वकालिक उच्च स्तर पर, भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता इस्पात बाजार, ये कहा है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की एक रिपोर्ट।

अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सऊदी अरब से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। पाकिस्तान से जुड़ी खबर है, बलूच मरीन फोर्स का बड़ा दावा, गवादर में बलूचों का हमला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 13 जवान मारे गए। हारमूज में दो जहाजों पर हमले, 21 भारतीयों को बचाया, दो फिलहाल लापता। हेडलाइंस का सिलसिला जारी है और अगली खबर है, सऊदी अरब के रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हूतियों के हमले के बाद फैली अफरा तफरी, सऊदी पर 22 दिन में छठा हमला, शाही परिवार बंकर में शिफ्ट, तनाव और बढ़ा। सऊदी ने सहयोगियों से मांगी मदद, तेल संकट गहराने का भी खतरा। ईरान ने हूतियों और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, रियाद एयरपोर्ट 17 अक्टूबर तक बंद किया गया है।

अब चलते हैं दोस्तों खेलों की दुनिया में। खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। 2026-27 विवाद के बीच शतक लगाकर रोए पोरेल, 120 रन पर सिमटी जम्मू कश्मीर की टीम। और बात करते हैं पैरा एशियाड 2026 की, 5 दिन बाकी हैं। बैडमिंटन में फिर से करिश्मा करेंगे भारतीय पैरा शटलर। और पिछले पैरा एशियाड में 4 स्वर्ण पदक भारतीय पैरा शटलर्स ने जीते थे। दिल्ली से नहीं शिफ्ट होगा भारत श्रीलंका का वनडे। और भारतीय टीम की बात करें तो गेंद बल्ले से ज्यादा भारत पर भारी फील्डिंग। प्रति मैच 1.58 कैच ड्रॉप कर रहे हैं भारतीय फील्डर्स। पूर्ण सदस्य देशों में खराब फील्डिंग में नंबर 1 बनी टीम इंडिया।

0: ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब यहां बारी है एक छोटे से अंतराल की, उसके बाद आपसे मिलेंगे, एक गाना प्ले करेंगे।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो सेट पर आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं और हमारी जो ऐप है न्यूज़ ऑन एआईआर, साथ में प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। और इस प्रोग्राम के प्रायोजक भी हमारे साथ हैं, वो क्या कहते हैं पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद गीत की बारी है।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: और ये है म्यूजिकल ट्रैक, इसके बाद मिलेंगे रीजनल हेडलाइंस लेकर।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846
1: कम खर्च बड़ी पहुंच
0: आकाशवाणी चंडीगढ़
2: और साथियों अभिजीत का गाया हुआ गाना तो आप ठीक से नहीं सुन पाए खैर कोई बात नहीं फिलहाल हम रीजनल हेडलाइंस आपसे शेयर करते हैं उसके बाद अगला गाना आपके लिए प्ले करेंगे

रीजनल हेडलाइंस के साथ मैं परवाज। पहले हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में 13.60 लाख मतदाताओं के नाम कटे, SIR की अंतिम सूची जारी। DA बकाया मामले में पंजाब सरकार को आपराधिक अवमानना का नोटिस। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों के प्रभावित होने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में CBI कार्रवाई पर लगाई रोक। सरहदी इलाकों में उद्योगों की कमी, बड़ा सियासी मुद्दा। दलों ने तय किए एजेंडे। अमृतसर तरन तारण पराली जलाने में हॉटस्पॉट घोषित।

आइए अब चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा में 504 करोड़ के बैंक घोटाले में सीए समेत चार गिरफ्तार, बैंक खाते जांचे। हरियाणा में नशा तस्करों की गिरफ्तारियों में 26.53% की बढ़ोतरी, 9 माह में 19.52 करोड़ की संपत्तियां अटैच, 71 नशा तस्कर निशाने पर। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह 19 से 22 अक्टूबर तक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दौरे पर, जापान और सिंगापुर के बाद अब दक्षिण कोरिया पर फोकस। मंडियों में 17.25 लाख टन धान पहुंचा,

आइए अब चलते हैं हिमाचल की तरफ। ऊना में कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा, निर्धारित नियमों के तहत करवाना होगा पंजीकरण अनिवार्य। हिमाचल में नशे की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और विश्वविद्यालयों की प्रशासन मिलकर करेंगे काम। सैनिकों और हिमालय समुदायों की स्वास्थ्य समस्याओं पर होगा शोध। ये थी रीजनल हेडलाइंस। अब एक सुनेंगे प्यारा सा गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

आइए अब सुनते हैं स्थानीय सूचनाएं। एसआईआर पर संग्राम। विभिन्न छात्र संगठनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से सेक्टर 17 आयोग कार्यालय तक निकाला रोष मार्च। नगर निगम चुनाव में लागू होगी एसआईआर वाली मतदाता सूची। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर होगा 35 वार्डों का चुनाव।

चंडीगढ़ में वीआईपी नंबरों का क्रेज, 0001 नंबर बिका 21,31,000 में। चंडीगढ़ महिला क्रिकेट टीम की रोमांचक जीत, बिहार को 3 विकेट से हराकर जीता मुकाबला। राज्य स्तरीय कराटे मुकाबलों में दमन कीरत कौर ने जीता स्वर्ण पदक। खून की चंद बूंदे 5 से 10 मिनट में खोलेंगी हड्डियों की सेहत का राज। CSIO ने विकसित किया पोर्टेबल बायोसेंसर, खून या सीरम के महज 5 से 10 माइक्रोलीटर नमूने से होगी जांच।

0: ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब बारी एक छोटे से अंतराल की।
1: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: और अब बारी है म्यूजिकल ट्रैक की।

0: तो साथियों ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने कुछ 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप

0: किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजे हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने

0: के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

और प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम होता है हर मंगलवार बृहस्पतिवार को। इस प्रोग्राम में हम आपसे मिलते हैं। आजकल श्रोताओं आप सबको मालूम है पावन नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी का जप तप किया जा रहा है और इस मौके को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं माता रानी की एक भेंट से। ये फिल्मी भेंट है, फिल्म का नाम है आशा, आवाजी हैं मोहम्मद रफी, नरेंद्र चंचल और साथियों की।

0: अभी आपने नरेंद्र चंचल, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आशा फिल्म से ये माता की भेंट सुनी। सफ़र सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं, गीतों का ये कार्यक्रम आपके लिए होता है और अभी मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, इस

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846
1: कम खर्च बड़ी पहुंच
0: आकाशवाणी चंडीगढ़

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है सफर सुरीला सा। कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं का ये कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को हम हर मंगलवार और बृहस्पतिवार आपके लिए पेश करते हैं। तो चलिए अब बारी है फिल्मी गाने की। गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में है, रोटी कपड़ा और मकान ये फिल्म है।

और साथियों हम भी नहीं भूले हैं कि अब समय है नॉन फिल्मी गाने का। आदित्य रिखाड़ी की आवाज में ये गीत है आपके रेडियो सेट पर।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

ये अगला गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्मी गाना है, फिल्म है रामलीला। इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

अभी आपने आशीष कौर की आवाज़ में ये नॉन फिल्मी गीत सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफ़र सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी नॉन फिल्मी गानों और रचनाओं का ये कार्यक्रम। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे कसौली ट्रांसमीटर से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ में हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर यह कार्यक्रम उपलब्ध है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद दिन में 11 बजे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज दिल से जुड़ी बातें होंगी, दिल की सेहत समस्याएं और निदान। जानकारी देंगे प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी PGI चंडीगढ़ प्रोफेसर यश कुमार शर्मा। तो दिन में 11:30 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन के बाद सुने हैं मित्रां दे प्रोग्राम। ये लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम होता है। तो फिलहाल सफर सुरीला सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अगला गाना आपको सुनवाएं। ये गाना है फिल्मी, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना है, ये फिल्म है रोदाली।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, ये फिल्म थी रुदाली।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: और ये है नॉन फिल्मी गजल।

ये गैर फिल्मी गजल आपने सुनी राजेंद्र और नीना मेहता की आवाजों में, और अब बारी है फिल्मी गाने की। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना है, एस डी बर्मन के संगीत में मजरूह के बोल हैं। ये फिल्म है सितारों से आगे।

आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम, ओ जरा रुक

0: आजा तो रुकती हो तो चला दे आजा आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा जरा रुक जा ओ जरा रुक जा।
1: मोहम्मद रफी को भी आपने सुना, ये फिल्म थी सितारों से आगे।
2: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
3: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ।

0: पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से. SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू.
1: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग.
2: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान. एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी. इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स.
1: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट. LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ. अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें. LIC, हर पल आपके साथ.

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सफर सुरीला सा प्रोग्राम के आखिर में एक भक्ति रचना कलाकार हैं अविनाश करण

0: अभी आपने अविनाश करण की आवाज में ये भक्ति रचना सुनी, इसी के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कुछ पलों में आप हमारा अगला प्रोग्राम सुनेंगे, प्रोग्राम FM लाइफलाइन।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
0: नमस्कार साथियों, FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ

0: डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर यशपाल शर्मा अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हर बार जब भी हम इस प्रोग्राम में उन्हें निमंत्रण देते हैं वो वादा निभाते हैं और पहुंच जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू। मैं आज जैसे कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड हार्ट डे हुआ है और आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया और आई थिंक हम कुछ इसमें अच्छी बातें डिस्कस करेंगे।
0: डॉक्टर यशपाल, हम आपको तो वर्ल्ड हार्ट डे पर याद करते रहे लेकिन मसरूफियत के चलते आप प्रोग्राम में नहीं आ पाए, लेकिन आपने अपना वादा पूरा किया है तो आज हम सबसे पहले वर्ल्ड हार्ट डे से ही शुरू करते हैं जो 29 सितंबर को मनाया गया, और इस बार आपके डिपार्टमेंट ने इस दिन क्या किया?
1: सारे दुनिया में सब जगह बहुत ही इसको उत्साह से मनाया जाता है। जो अपने डिपार्टमेंट में इसको सेलिब्रेट किया, इसको दोनों रिस्क फैक्टर पे किया। एक तो हमने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, जो इमर्जिंग की रिस्क फैक्टर, न्यू रिस्क फैक्टर आ रहे हैं, और एक दूसरा कि कार्डिक मोर्टेलिटी, जो कि हमने कार्डियोनिक शॉक में और अक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में वर्ल्ड में लीस्ट मोर्टेलिटी अचीव की है।
0: जी जी, वो एक बड़ा, मैं कह रहा हूं, हाँ, वो कि हर बार आपका जो डिपार्टमेंट है और आप खुद ये रुचि लेते हैं कि नई नई क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, किस तरह से लोगों को हम जागरूक करें, तो मुझे लगता है कि इस बार आपने फिर कोई नई खोज की होगी।
1: जी जी, बेसिकली हम इस पे ना बहुत सालों से लगे थे। 2005 में जब हमने देखा कि कार्डियोनिक शॉक की उस वक्त 90% मोर्टेलिटी होती थी, तो सारा था कि उसको कई तो ट्रीट ही नहीं करते थे कि पेशेंट इज टू सिक। इवन वेस्टर्न कंट्री कह देते थे कि ये हमारी गाइडलाइन में नहीं है, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसका पैसा कौन देगा अगर कुछ हो गया। तो दोज पेशेंट्स वर जस्ट लेफ्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट, सेइंग दैट पेशेंट इज टू सिक टू बी ट्रीटेड।
0: वो रिस्क फैक्टर के साथ ही रह जाते थे।
1: रिस्क फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि दूसरे भी मान जाते थे, अटेंडेंट भी, भाई जब इतना ही खराब है, कुछ मिलना ही नहीं तो क्या करना। पर हमने देखा
0: तो वहां से आपकी सोच डेवलप हुई, वहां से डेवलप हुई, इस संबंध में क्या किया जा सकता है।
1: तो हमने देखा कि एक 10 में से एक बच रहा है, वो कैसे बच रहा है, तो उसके हमने माइन्यूटली सारा स्टडी किया। फिर उसको करते करते हमने 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, 3। जब 3 हुए तो हमने इसमें ना एक थीसिस का किया कि एक भाई कार्डियोनिक शॉक पे रिसर्च शुरू कर दें। दुनिया में कहीं भी कार्डियोनिक शॉक पे रिसर्च नहीं थी, ना कोई प्रीवियस लिटरेचर था
0: इससे पहले
1: रिसर्च प्रोजेक्ट थी।
0: तो आपने ये बीड़ा उठाया।
1: हाँ, बीड़ा उठाया, पर बहुत ये एक बहुत ही वो
0: चैलेंजिंग था।
1: और जो हमारा डीएम रेजिडेंट था वो रोने लग पड़ा कि सर देर इज नो लिटरेचर, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे लिटरेचर ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। वो हैदराबाद से था तो मेरे को अभी भी याद है, एक दिन तो उसने बिल्कुल ही इमोशनली टूट गया और टीयर्स आ गए। मैं उसको बोला नहीं तो आप ऐसे मत कर, अगर मैं उस वक्त छोड़ देता तो अगले कैंडिडेट ने भी नहीं लेना था। तो जब हमने किया और पेशेंट बचे उसमें, तो इमीडिएटली वो आया। फिर हमने उसी पे रिसर्च, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, कार्डियोनिक शॉक और उसमें बाकी चीजें देखनी।
0: और वो जो डॉक्टर था उसे तो लगा हुआ कि मैंने कुछ अचीव किया।
1: हाँ, अचीव किया
0: और आपकी बदौलत।
1: और उसका जब आगे आता रहा, सारे ने फिर कार्डियोनिक शॉक पे, मैंने सारी रिसर्च कार्डियोनिक शॉक पे की, उसके जो सारे कंसेप्ट थे उनके प्रोटोकॉल में लगाए, और करते करते हमारी जो मोर्टेलिटी 2015-16 में 40% में आ गई, 40-42।
2: सर गुड आफ्टरनून, मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर यशपाल से, कुछ पूछना चाहूंगी।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। डॉक्टर यशपाल प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: मेरा नाम दिव्या है, मैं सेक्टर 18 चंडीगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी दिव्या जी, अब कीजिए अपना सवाल।
2: हाँ जी, सो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम सबकी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स, हैबिट्स, जो भी आजकल का खान पान हमारा चल रहा है, तो कुछ ऐसे टेस्ट जो हम पहले से ही करा सकें और जिससे कि हमें ये वार्निंग मिल जाए या प्रिकॉशन मिल जाए कि कब चेंजेस हमें कैसे लाने हैं, क्या बता सकते हैं डॉक्टर यशपाल हमें?
0: जी, मतलब आपको ये पहले से पता चल जाए कि समथिंग इज देयर।
2: हाँ जी, हाँ जी, जी।
1: आपने आप ही बताया कि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो रहा है। पहले तो उसको लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए कि जो जो आपको पता लग जाता है, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट, कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। सेकेंडली, सपोज कर ही चुके हो तो उसके बाद में आपको जो कि जैसे कि भी हार्ट के टेस्ट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग है, ब्लड शुगर है, लिपिड हैं, और कोई फैमिली हिस्ट्री है या

0: आपको कोई रीसेंट सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये टेस्ट करा के एक ECG कार्डिक मेडिकल और कार्डिक एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए।
1: हाँ दिव्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और डॉक्टर साहब इससे पहले आप हमें अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे थे जो अपने आप में बड़ी ही इंटरेस्टिंग है।
0: जी जैसा कि मैं बता रहा था कि जब 40% हुआ तो हम उसको आगे करते करते कम करते 30-25 और ड्यूरिंग कोविड हमारी रिसर्च ने सारे वर्ल्ड को हेल्प किया क्योंकि हमने ये देखा कि जो हार्ट अटैक होते हैं ये अकेले हार्ट अटैक ऐसे नहीं होते, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ देम इन्फेक्शन से प्रेसिपिटेट होते थे।
1: अच्छा, कोई बहुत सारे फैक्टर हैं।
0: हाँ कोई हाँ। बहुत सारे फैक्टर हैं
1: क्योंकि पहले तो यही माना जाता था ना कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है,
0: ना,
1: आपको शुगर की प्रॉब्लम है।
0: इसमें ऐसा था कि जैसे हमने देखना या तो पेशेंट को साथ में निमोनिया हुआ होता था या एक ऐसी हिस्ट्री होती थी कि उसको 3-4 हफ्ते पहले उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ माइनर सा और अच्छा। उसने नोट नहीं किया, उसको बाद में पूछते थे कहते थोड़ा सा हुआ था, तो उसमें एक पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्टेज चलती रहती है जैसे कि कोविड में था। कोविड में वो इमीडिएट होता था तो हमें था कि हमने CRP किए, TLC काउंट्स देखा कि कैसे बढ़ता है, प्रो कैल्सिटोनिन और भी बाकी इन्फ्लेमेशन के चांसेस जैसे फेस की लुक और सारों से देखा कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का बहुत रोल है जो कि प्लाक को रप्चर कर रहा है। जैसे कि एक प्लाक होता है लिपिड्स का, जैसे इन्फ्लेमेशन होती है वो थिन प्लाक रप्चर कर जाता है।
1: डॉक्टर साहब मैं आपको फिर रोकता हूँ, आपको चाहने वाले हमारे श्रोता हैं और उनको पता चलता है कि डॉक्टर यशपाल शर्मा आए हैं तो वो बात करने से रह नहीं सकते तो हम पहले ये कॉल लेते हैं। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी।
2: हेलो
1: जी
2: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, वेलकम, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर मैं चंडीगढ़ से मंजू बात कर रही
1: हूँ। मंजू जी बोलिए, आपका सवाल क्या है?
2: सर ये है कि मेरी बेटी की आज से 10 साल पहले सर्जरी हुई थी हार्ट की।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, उनके दिल में छेद थे 2
1: जी।
2: और वो पूरी तरह से ठीक हैं, पर अभी ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि वो जैसे ट्रैकिंग पे जा सकती हैं?
1: जी ये जानना चाहते हैं कि ट्रैकिंग पे इनकी बेटी जा सकती है कि नहीं।
0: बेसिकली ऐसे है कि ट्रैकिंग पे जा सकते हैं बट ऐसे नहीं, पहले आपको एक कार्डिक एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए जिसमें कि वो सारी उसकी एक्टिविटी ECG इको होल्टर और बाकी कैसी ट्रैकिंग कैसी हाई अल्टीट्यूड पे जाना है सारी चीजें अकॉर्डिंग टू उनकी सारी हार्ट फाइंडिंग से कोरिलेट कर ले डॉक्टर। सपोज वो कहते हैं नहीं अवॉइड करो तो फिर अवॉइड करनी चाहिए।
1: मंजू जी मुझे लगता है कि डॉक्टर की क्लियरेंस जो है वो बहुत जरूरी है इस मामले में।
2: जी सर।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे थे, मतलब मरीज को बार बार आपने उससे जाना होगा कि कुछ हुआ तो नहीं पहले, कम हुआ या ज्यादा हुआ, हमें बताओ क्या हुआ।
0: जी जैसे कि मैं बता रहा था कि कोविड में जो हमारी मोर्टेलिटी सबसे कम आई, इवन जब हम पहले करते थे उससे भी कम, हमें बड़ा था कि कैसे हुआ बिकॉज पेशेंट्स का लोड थोड़ा सा कम हो गया, जो थे पेशेंट वो बेस्ट ट्रीट हुए और बेस्ट ट्रीट करते हम उसमें वेबिनार भी कर सके और सारे वर्ल्ड को जब हमने बताया कि ऐसे करो बिकॉज उस वक्त सारे अगर देखो तो वेस्टर्न में एकदम सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और वो जब हमने बताया कि डोंट टेक दिस पेशेंट इमीडिएटली टू कैथ लैब बिकॉज दे आर हैविंग इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी स्टेट इज गोइंग ऑन, अगर वो करोगे तो उसमें थ्रोम्बस बन के एकदम पेशेंट को मोर्टेलिटी हो जाती थी और ये मोर्टेलिटी नहीं उसके साथ जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ उनकी भी बहुत मोर्टेलिटी हो गई। तो ये 1000 में जब हो गई, हालांकि हम पहले बोल रहे थे ऐसे, पर जब हमारा वेबिनार शुरू हुआ इंडो यूरोपियन अमेरिकन वेबिनार जिसमें कि हमने मल्टीपल वेबिनार किए हफ्ते के 2 या हफ्ते का 1 कभी ऑल्टरनेट डे पे भी, तो ऐसे उसके साथ ऐसा पड़ा और एक हफ्ते में जैसे ही हमने ये बताया तो सारी मोर्टेलिटी कम हो गई।
1: बहुत अच्छी बात है और इसीलिए PGI जाना जाता है अपनी खासियत के लिए।
0: जी जी।
1: तो एक श्रोता ऑनलाइन है।
3: हाँ जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, GTV मार्केट अहमदगढ़ मंडी से मोहम्मद अनवर अंसारी बोलता हूँ।
1: मोहम्मद अनवर अंसारी भाई क्या हाल है?
3: हाँ शुक्र अल्लाह का शुक्र है।
1: जी जी जी, और हमारी दुआएं हैं कि आप अच्छे रहें, भले चंगे रहें और डॉक्टर यशपाल हमारे साथ हैं दिल के माहिर, बताइए क्या पूछना चाहेंगे।
3: मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है, जैसे किसी को कई बार घबराहट की या बेचैनी की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये हम ECG करवाए उस समय नहीं पता चलता तो ECG को प्रॉपर माना जाता है या इको को माना जाता है? जैसे इको से स्कैन होती है, अगर जैसे कोई ज्यादा एज हो या शुगर की प्रॉब्लम हो उसको उसका हार्ड का ट्रीटमेंट या उसके जो स्टड वगैरह पहता है वो करवा सकते हैं या नहीं सर?
0: जब भी कोई पेल्पिटेशन या

0: ऐसा हो उसको एसिडिटी नहीं समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि सारे उसको एसिडिटी ले लेते हैं और कई बार रात होती है अगले दिन पेशेंट पहुंच भी नहीं सकता
1: जब पसीना आए
0: के और घबराहट हो रही है, दिल कैसे कांप रहा है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि घट रहा है दिल
1: जी जी
0: या सम टाइम टैकीकार्डिया हो गया, तो ये अगर बच्चों में तो डिफरेंट होता है, बट अदरवाइज ये जो है तो कभी भी इसको ना ये नहीं सोचना चाहिए एसिडिटी है, हमेशा कार्डिक एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए। जैसे कि आपने बोला ईसीजी नॉर्मल हो सकती है, ईसीजी नॉर्मल हो सकती है वो ट्रांजिएंट पैल्पिटेशन हुई हो, बट आगे होल्टर या एक्सटेंडेड होल्टर जो 3 दिन या 7 दिन जब 48 आवर्स ऐसे लगा के वो पता लग जाता है अगर रिकरेंट हो रही है। और सेकेंडली डॉक्टर जब पूरी हिस्ट्री लेता तो वो एक ऐसा नहीं है, फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारा वो पूछ के तब वो निष्कर्ष निकालता है, फिर वो आगे ना डायग्नोज बना लेता है।
1: आप सही कह रहे हैं अंसारी जी, ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो वहाँ आपके नजदीक लोकल कोई कार्डियोलॉजिस्ट है उसे पहले मिल लिया जाए
0: जी,
1: फिर अगर पीजीआई आने की जरूरत पड़े तो वहाँ माहिर बैठे। और डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस तरह से मोर्टेलिटी रेट जो है
0: जी
1: वो कम हुआ
0: जी, उसमें था जैसे ना हमारे कोविड में मोर्टेलिटी कम हुई और उन दिनों नेक्स्ट ईयर हमारा जो सेंटर है कार्डिक सेंटर अमंग द टॉप 10 इन द वर्ल्ड
1: जी,
0: तो हमें सर्टिफिकेट आया वो, चूंकि न्यूयॉर्क और जर्मन की एक बड़ी एजेंसी है जो कि सारे हॉस्पिटल को करती है, तो ये हमारा पहला ही बार था कि इंडिया का कोई हॉस्पिटल वर्ल्ड रैंकिंग में आया।
1: इस
0: तो
1: वजह से आया।
0: इस वजह से बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट परसेप्शन आउटकम और जो स्ट्रेटजी भी गई है कंबाइंड ऑल टूगेदर।
1: तो फिर आपके डिपार्टमेंट को हम सलाम करते हैं
0: जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा वो कि हमारा पहले पर जब हमारे टीचर्स एल्डर जो उन्होंने भी देखा तो बड़े खुश हुए।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मेरे को कहा ये आगे आप पर इसको आगे कैम रखना भी बहुत आप जरूरी है
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: जैसे
1: जी।
0: हमने पूरी कोशिश की कि उसको आगे लेके जाएं, बट जैसे है कि कई बार लोड ज्यादा पड़ जाता है पेशेंट, हम कभी किसी को ना नहीं करते, अब हमारी जैसे कि चाहे लोड है बट हमने उसको मोर्टेलिटी कम करते सिंगल डिजिट में ले आए हैं 5-9%
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपके सीनियर्स ने भी कहा कि इसको कायम रखना है, वो अपने आप में चुनौती होती है
0: जी जी,
1: तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आपकी राह में आती हैं आजकल के दौर को देखें
0: जी जी। इंडिया का ग्राफ अभी बढ़ी जा रहा है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, सडन कार्डिक डेथ है, यंग में हो रहे हैं, चाहे MI है या कैंसर है, वो सारी बीमारियों का एक ग्राफ बढ़ रहा है जिसमें कि कार्डिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डेवलप्ड कंट्री थे उनका नीचे आना शुरू हो गया। तो हमने देखा ये क्यों है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई वो सर्केडियन रिदम का आया।
1: अच्छा।
0: सर्केडियन रिदम में अगर कोई जो स्लीप 12 बजे के बाद लेते हैं वो स्लीप अच्छी नहीं, वो हाइपरटेंशन करेगी करेगी,
1: वो साउंड नहीं है,
0: वो डायबिटीज करेगी करेगी, वो हार्ट
1: अटैक। अच्छा, 12 बजे के बाद
0: की, तो अगर उससे पहले लेते हैं तो वो जो स्लीप है वो सबसे बेस्ट स्लीप होती है, जिसको NREM स्लीप बोलते हैं, वो डबल द एनर्जी देती है।
1: तो आपके मुताबिक कितने बजे तक सो जाना चाहिए?
0: हमारे मुताबिक 10:30 बजे तक बंदे को सो के, चाहे सुबह 5 बजे और अर्ली
1: उठना होता,
0: अर्ली हॉस्पिटल शुरू हो जाए, अर्ली सारे ऑफिस शुरू हो जाए, उससे जो एनर्जी सेविंग होगी, जो डिजीजेस कम होगी, जैसे कि हाइपरटेंशन है, सडन कार्डिक डेथ है, एथरोस्क्लेरोसिस है, और
1: वो
0: भी
1: कम हो जाएंगे,
0: रोड साइड एक्सीडेंट, डिप्रेशन, सुसाइड,
1: और कम हो जाएंगे,
0: सारे कम हो जाएंगे, और 50-60% जो कि बहुत बड़ा वो है। तो इससे एकदम जब बीमारी कम होगी, हॉस्पिटल का मैच हो जाएगा पेशेंट का, और ओवरलोड नहीं होंगे। और सेकेंडली जैसे कि हमने एक नई थ्योरी दी है कि किसी भी पेशेंट को जब हीमोग्लोबिन कम हो उसको इलेक्टिव में मत लो, इवन ये इमरजेंसी भी है उसका जो 13-14+ करो, अदरवाइज 15+ हीमोग्लोबिन रखो, क्योंकि जो कि जब भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसका इलेक्टिव सर्जरी में कोई वो नहीं पड़ता, बेस्ट आता है रिजल्ट। अगर कम हो तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, तो एक तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगी, एक जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बेड का जो मैचिंग हो जाएगी, जो सारे बंदे जो इलेक्टिव हैं उनको हम डेट दे के पहले बिल्डअप करेंगे फिर करेंगे, और जो इमरजेंसी है वो बेस्ट हो जाएंगी, और जो जो ब्लड बैंक का लोड है
1: ये तो बहुत ही स्टडी आपकी, हाँ,
0: ये बहुत अच्छी है, मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये एक इंडिया में एक बहुत $1 trillion में 10 ईयर्स का आ रहा है, और वर्ल्ड में इसका जो मैं बताऊं तो शायद ना माने, बट इट इन 100s of trillion, अराउंड 700 trillion।
1: मुझे लगता है कि आपकी खासियत ये है कि जब भी आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप पीछे पड़ जाते हैं
0: जी जी
1: कि इसके इसकी गहराई तक जाना है
0: जी जी
1: हाँ वो मुझे लगता है कि ये रिसर्च आपकी यही शो करती है
0: हमारा बड़ा था कि जैसे हम पहले हम
1: अच्छा जैसा आपने कहा था कि 10:30 तक सो जाना चाहिए
0: जी जी
1: अब कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है वो रात की शिफ्ट में काम करते हैं
0: जी जी
1: रात को 9 बजे उनका ऑफिस शुरू होता है
0: अगर रात को होता है

0: कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी इमरजेंसीज हैं वो तो अच्छा, आनी अच्छा, है अच्छा, अच्छा. तो इमरजेंसी विल कंटिन्यू बट दैट विल बी नॉट फॉर होल मंथ, दैट विल बी जस्ट फॉर 5-6 डेज इन ए मंथ
1: जी.
0: एंड विद दैट द नंबर ऑफ आवर्स एंड एवरीथिंग, अगर एफिशिएंसी ज्यादा हो, ज्यादा घंटे करके नहीं काम का होता, अगर 6 घंटे में आप 12 घंटे की एफिशिएंसी देते हो
1: वो मैटर करती है
0: आप काम ना. और जैसे कि आजकल की यूथ है इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अपना घर में स्ट्रेस है, वो भी एक हाइपरटेंशन सारे फैमिली में हार्ट अटैक का कारण है
1: जी.
0: और जो एम्प्लॉयमेंट करनी है और उनकी सैलरी भी देनी है, तो उनको ऐसे करो कि फ्लेक्सी टाइम दे दो. अगर फुल नहीं है, फीमेल है, उनको भी फ्लेक्सी टाइम दे दो, 2 आवर्स 4 आवर्स, रादर देन उनको बिना वैसे अगर पैसा मिले, जो काम करके मिले तो उसका तो दी बेस्ट रिजल्ट आता है उनको भी, फैमिली को भी, नेशन को भी, और एक विन विन सिचुएशन हो जाती है. तो इससे स्टेटों का, सेंटर का एक तो पैसा बचेगा, एक इसमें जो ग्रोथ आएगी GDP में वो अनइमेजिनेबल है आगे
1: जी,
0: क्योंकि एवरी बॉडी विल वर्क. एंड जो फीमेल हैं अगर 2 या 4 घंटे फ्लेक्सिबल, तो फैमिली जो अपनी किड्स केयरिंग है, ग्रोथ है बच्चों की,
1: परिवार के लिए जो समय,
0: ये मैंने जर्मन में देखा था. तो जर्मन में डॉक्टर छतवाल थे, तो उन्होंने मैं देखा उनका स्टाफ ना, क्योंकि 11 बजे आया कोई 12, तो 2 घंटे काम, 3 घंटे का चला गया. मैं कहा सर ये कैसी है, कहते दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री दैट दोज हु आर हैविंग किड्स आर समथिंग दे कैन वर्क फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन देम,
1: एंड देयर आउटपुट हम देखते
0: हैं, आउटपुट दे डू वेरी गुड वर्क. तो अगर जैसे यहाँ इंडिया में भी जैसे ही लगा ये, जैसे कि मैं अभी चेन्नई गया था, तो वहाँ पे मेरे कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त, उन्होंने बताया कि अवर फीमेल्स आर वर्किंग, सो एवरी कंपनी इज कमिंग विद दैट. तो दैट कंसेप्ट कंबाइंड विद दैट माई जर्मन कंसेप्ट दैट एवरीबडी इज स्टार्ट्स वर्किंग, यूथ दिस वन एंड फीमेल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो फैमिली में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक कम हो जाएंगे.
1: आपका कहने का मतलब ये कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि दिल पर दबाव ना पड़े.
0: बिल्कुल नहीं,
1: दिल खुश होके बिल्कुल एक खुशनुमा एनवायरनमेंट में काम,
0: सारे तंदुरुस्त हों, कोई अनीमिक ना हो. अनीमिया एंड फ्रेलिटी न्यू रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक नया रिस्क फैक्टर आया है. और एक पेपर ऐसा आया है कि उन्होंने 138 कंट्रीज का पूरा डाटा लिया, उसमें देखा कि हाइपरटेंशन, ये हार्ट अटैक, डायबिटीज में क्या सारा है. तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे GDP कम है, हेल्थ का बजट कम है, वहाँ पे हाइपरटेंशन इंसिडेंट ज़्यादा है. तो 138 कंट्रीज में उन्होंने कंट्री वाइज देखा, उसमें सारे कंट्रीज का नाम है. तो बड़ी अच्छी वो एक स्टडी है
1: जी.
0: कि अगर हम एक तो पहले रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन करें, कि जिसको वर्क मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, तो उसके साथ अगर ये कंबाइंड हो तो एक तो हार्ट अटैक कम हो गए, एक दूसरी चीजें कम हो गई, और सेकेंडली आपने बजट में तो लगाया नहीं, 0-0 विन विन सिचुएशन है
1: जी, जी, जी.
0: और उसके साथ अगर 1% अपना हेल्थ या 2% बढ़ाया तो उससे 5% इनकम आ जाएगी, तो GDP 5% बढ़ जाएगी.
1: और स्टेप बाय स्टेप जो है कि जो हमारा सपना है,
0: सपना
1: हाँ, हम पूरा हो जाएगा.
0: 2037 तक डेवलप हो सकते हैं इंडिया, ईज ऑफ लिविंग हो, तो एक किस्म का बड़ी ये कैटलिस्ट एज ए दिस वन फॉर रिफॉर्म.
1: और भारत सरकार तो हर मामले में
0: एक्शन हाँ. ले रहे हैं, वो हमें एंडोर्स भी करते हैं हाँ. कि सिटीजन के व्यूज आए जो कि हम इमीडिएटली इंप्लीमेंट करें
1: जी, जी.
0: और अपने प्लस कंबाइंड टुगेदर सभी के व्यूज.
1: बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ईज ऑफ डूइंग
0: शुरू कर दी, ईज ऑफ,
1: और वो हर मामले में है. तो डॉक्टर साहब, ये तो वर्ल्ड हार्ट डे को लेकर आपने बताया कि आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया, और आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूँ कि अलग सी मुस्कान है
0: जी.
1: कि जो आपने खोज की और आपने पाया कि ये फैक्टर्स हैं जिनको काबू कर लिया जाए तो दिल के जो मामले हैं खराब होने के वो बहुत कम होंगे, और अस्पताल पे जो दबाव है वो कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा, लोग तंदुरुस्त रहेंगे. तो आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं. दिल की अगर हम बात करें तो दिल को दुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाए?
0: बेसिकली दिल को दुरुस्त रखने के लिए यही है कि कोई भी स्ट्रेस ना हो, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है सबसे बेस्ट हो, आपका जो डाइट है उसमें फ्रूट हो और जो सॉल्ट है वो कम हो, और ऐसे ही शुगर है वो भी हाफ,
1: मतलब 5S कम हो.
0: हाँ, अगर
1: शुगर, सॉल्ट, स्मोकिंग
0: स्ट्रेस
1: और सेडेंटरी लाइफस्टाइल
0: आप हमेशा सैर करो. एक बड़ा है कि जिम का, कोई भी जिम में जाता है, क्योंकि कईयों के ना मायोकार्डियल ब्रिज होता है, कंजेनिटल नॉर्मल कॉर्नी हो सकती है, कई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं
1: हाँ.
0: ना ब्लॉक ना भी हो तब भी वो क्लैप्स

0: कर सकते हैं,
1: जोश में आ जाते हैं।
2: जोश में तो कभी भी, एक तो जोश में नहीं कम करो, और हमेशा अपना 30 या समथिंग के हैं तो उसको हमेशा एक एग्जामिनेशन मेडिकल कार्ड करवा लेना चाहिए, ECG या जो, और डॉक्टरों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। एक हमने बड़ी नई फाइंडिंग देखी है कि जैसे कोविड में या पहले कुछ आर्टरी टॉर्चुअस होती हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट, तो जब टॉर्चुअस होती हैं उनमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है और स्लो फ्लो होता है, जबकि क्लॉट बनने के चांसेस वो पेशेंट का जब हम देखते हैं कि यह ब्लॉक नहीं है उनको, वो नॉर्मल नहीं होती, कई बार वो उसको नॉर्मल पास कर देते हैं कई जगह। तो ऐसे पेशेंट जब भी हो, जब कोई एटिपिकल चेस्ट में नॉर्मल कॉर्नरी है अगर, तो डॉक्टर्स को उसको ब्लड थिनर, एस्पिरिन, स्टैटिन और लो डोज नाइट समथिंग एंडोथेलियल हीलिंग के लिए वो जरूर दे देनी चाहिए। अदरवाइज वही एक एथेरोस्क्लेरोसिस का एडवांस का कारण है, और उसमें ऐसा क्लॉट बनता है सडनली द पेशेंट हैज शॉक, कार्डियक शॉक।
0: ये बारीकी है,
2: ये बारीकी जो कि हमने देखा,
0: आम डॉक्टर भी नहीं बताते होंगे इसके बारे में क्या।
2: एक्चुअली डॉक्टर हमने इसको ना 2007-08 में एक थीसिस दिया था, पिकअप तो मैंने बहुत पहले कर लिया था ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन। जब हमने पहले बोला तो सारे कहते क्या है ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जो सर्जन प्लस एनेस्थीसिया वाले जो हमारे दोस्त थे वो हंसते हंसते आते थे कैथ लैब में कि यशपाल बताइए क्या एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्या है, नई बीमारी।
0: अच्छा,
2: तो हालांकि पब्लिश हमारा थोड़ा सा लेट हुआ, बट हमने सबसे पहले, चाइना ने इसका एक पेपर पहले कर दिया था पब्लिक।
0: जी जी जी,
2: तो रिसर्च हमारी इंडिया की सबसे फर्स्ट है ये।
0: जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात होती है, आमतौर से कोई करवाता है तो उसका बड़ा हुआ आता है सामने, किसी का फैटी लीवर है, तो इसका हमारे दिल पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हमें हमारी दिनचर्या में हम बिल्कुल ठीक हैं लेकिन जैसे टेस्ट करवाते हैं पता चलता है कि फैटी लीवर है और या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस पर काबू करने के लिए क्या किया जाए?
2: जी ऐसे है कि
0: अब पता चल गया फिर तो डॉक्टर देखेगा,
2: जी
0: उससे पहले वो
2: ना हो
0: या कंट्रोल में रहे।
2: देखो ऐसे तो जैसे कि डाइट से इसका कोरिलेशन है, एक फैमिलियल भी हो सकता है जिसको फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया बोलते हैं। जी जी, अगर कोई इंटरनल सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस है, जो साइकोसोशल स्ट्रेस है, वो भी जो हार्मोन रिलीज करती है, वो हार्मोन रिलीज करने से जो फैट बढ़ सकते हैं, तो एक स्ट्रेस भी एक कारण है जो कि हिडन कॉज है जिससे कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल हो सकते हैं, विच कैन लीड ऑन टू द फैटी लीवर ऑल्सो।
0: अच्छा डॉक्टर यशपाल, ये बताइए जब दिल का दौरा पड़ता है तो उस वक्त क्या होता है, क्या वो व्यक्ति खुद अगर थोड़ा सा होश में है अपनी मदद आप कर सकता है अगर कोई उसके आसपास नहीं है?
2: जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि हम CPR तो बोल देते हैं कि ये कोई पड़ा है तो उसको CPR करते ले आओ,
0: नहीं आती तो क्या करेंगे?
2: एक तो चलो वो तो आनी चाहिए, वो तो दूसरा करेगा, अगर उसको लग रहा है कि मेरे को छाती में दर्द है प्लस सारा पता लग जाता है,
0: थोड़ी संकेत मिलता है
2: ग्लूमी होती है, इसको थोड़ा कहीं इग्नोर करने की करते हैं, नहीं मेरे को नहीं है, मैं एक्सेप्टेंस नहीं होती, थोड़ा सा ये अगर हो कि भाई आप ना एस्पिरिन की एक गोली ले लो और साथ में एक पेंटोपराजोल या रेनेटिडिन समथिंग ले लो और डॉक्टर को दिखा लो, दौड़ो मत, एकदम रेस्ट करके कैसे पहुंचना है, सो दैट जो आपका इस्कीमिया इतना ना बढ़ जाए कि आर्टरी 100% बंद हो जाए। जैसे 100% बंद होगी तो वो ST एलिवेशन MI हो जाएगा और मसल डैमेज शुरू हो जाएंगे।
0: मतलब तो इतना अगर वक्त मिल जाता है,
2: वक्त मिलता है
0: लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना,
2: अगर सडन कार्डिक डेथ बढ़ रही है जब उसमें सारा है, तो अगर ये ले लेंगे तो सडन कार्डिक डेथ कम होगी। जी
0: और डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे कि रंज की घड़ी को भी खुशी में गुजार दे।
2: जी जी जी, जी।
0: लेकिन उस दिल को रखने के लिए हमें दिल को संभालना पड़ेगा।
2: जी जी,
0: क्योंकि परवरदिगार ने तो दे दिया, उसने तो दिल ऐसे दिया था।
2: जी
0: लेकिन आपने अपनी गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से उस दिल को बहुत नाजुक कर दिया।
2: जी जी,
0: तो डॉक्टर साहब आप दिल के माहिर हैं और दिल एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने आप में आपकी बातें सुनकर डर भी लगता है और क्या बोलते कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अपने दिल को हम संभाल सकते हैं। तो दिल से जुड़ी अगर हम एक और बात आपसे जानना चाहें कि कुल मिला के आपने जो बीच में एक बात कही थी कि जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं अगर वो पॉजिटिव वे में काम करें तो दिमाग क्या बोलते टेंशन फ्री रहेगा, मन में खुशी रहेगी तो दिल भी जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ हमारी दिनचर्या में हमारा आहार कैसा होना चाहिए?
2: जी जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि पहले था लिखा हुआ कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लो कि 4-5 चपातियां, तो हमने कहा था कि एक चपाती या आधी चपाती,
0: ये भी आपकी खोज थी कि एक चपाती,
2: उससे जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस

0: के साथ डीप ब्रीदिंग अगर करें हम तो और बेटर होता है। जैसे कि डाइट में ये है कि आपके प्रोटीन, आयरन, एसेंशियल एलिमेंट्स वो सारे ज़्यादा होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए। एक रोटी को आप 20 मिनट लगा के अल्ट्रा स्लो खाओ और उसमें आप खा ही नहीं जाएगी, आप आधी में से छोड़ जाओगे। अगर वो आधी पे आते हैं तो उसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो मसल होंगे, जो आप फैट कम ले रहे हो, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, तो ये वेट भी रीडिफाइन होगा।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं दिल को लेकर, और दिल का माहिर सामने बैठा हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन प्रोग्राम का समय जो है लगभग समाप्ति की ओर है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति, चाहे वो जवान है बूढ़ा है, अपने दिल का ख्याल रखने में कुछ जो आप अगर टिप्स बता दें।
0: एक तो फ्रूट सैलड्स ये ज़्यादा लें, सॉल्ट कम कर दें, शुगर कम कर दें, डेली वॉक करें, स्मोकिंग ना करें, जो स्मोकिंग करते हैं वो भी पूरी कोशिश करें छोड़ दें।
1: आज चंडीगढ़ में तो वैसे ही नो स्मोक जोन है,
0: नो स्मोक जोन है। और साथ में अपने कोई भी स्ट्रेसेस को निकालने की कोशिश करें, और अपने हार्ट जो कि बहुत ही एक टेंडर ऑर्गन है उसको आप पूरा ख्याल रखें। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप हार्ट प्लस ये चीज़ें ठीक रखते हो तो लॉन्जिविटी 10-20 years बढ़ जाएगी,
1: लंबी उम्र जो है। अच्छा ये बताइए योगा का कितना योगदान?
0: योगा का बहुत योगदान है, योगा और ये जो अपनी वॉक है। रीजन बीइंग कि योगा एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपके सारे ऑर्गन्स का ऑक्सीजन मिलती है
1: जी।
0: ये योगा का बेसिकली मैंने ना 2003 में लिखा था एक पेंसिल से
1: जी,
0: तीन लिखे थे, एक CFL बल्ब को चेंज कर दो उससे इंश्योरेंस हो जाएगी, जो 30,000 हमने कलाम राजू साहब का स्टेंट लगाया था 30-40,000 में, मैंने एंजियोप्लास्टी की जिसमें मेरे को स्टेट अवार्ड भी मिला था अपने CM साहब पंजाब से। तो हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना के इंडियन स्टेंट का सारा किया और सारी इंडियन इंडस्ट्री उससे ग्रो की। और दूसरा था कि आप डे लाइट कंजर्विंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वही सर्कैडियन रिदम बाबा आ गया
1: जी,
0: तो उससे विल सेव मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड मोर लाइफ
1: जी।
0: और तीसरा था कि गोइंग टू टेम्पल्स मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग,
1: ध्यान लगाएं,
0: योगा ध्यान,
1: गहरे श्वास
0: लें, गहरे श्वास। अब ये एक बड़ी जो अभी नोबल प्राइज मिला है, ये एक बहुत अच्छी जबरदस्त चीज है ऑप्टोजेनेटिक्स एंड लाइट्स का,
1: अभी मिला,
0: ये खोल देगा ब्रह्मांड तक के सारे इस रहस्य, न्यूट्रिनो एंड ऑल। एक सेंट की आईज, एक डॉक्टर्स का अच्छा देखना पेशेंट को, हाउ इट कैन have a positive outcome in that patient. This will be a new thing.
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब।
0: एक प्रोटीन का बहुत महत्व है, प्रोटीन जो कि लार्ज क्वांटिटी में लेनी चाहिए, जैसे कि दाल है, लस्सी है, पनीर है, सोयाबीन है, टोफू है, जैसे भी प्रोटीन वाली चीजें हैं उनको ज्यादा लेना चाहिए। ये एक प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इम्यूनिटी भी बनाती है, आपके मसल्स, हार्ट, ब्रेन, हमने ऐसे देखा कि प्रोटीन देने से जिनका हार्ट वीक था उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया, तो हम आजकल 10-50% इजेक्शन फ्रैक्शन करके ट्रीट कर रहे हैं, जो कि अभी वर्ल्ड मान नहीं रहा, उनको पता नहीं, पर हम इसको पेटेंट कर देंगे अभी ना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन्स का डाइट में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सारा कहा है कि तेल कम करो, तेल को हाफ करो, अपना हीमोग्लोबिन 14 प्लस रखो, बच्चों में वैसे और ज्यादा होना चाहिए, ये तो अडल्ट का लेवल है 15-17, 14-16 फीमेल में, बच्चों में ये 17-18 होता है, तो हमारे बच्चों का तो 11-11 है।
1: आप हमारे स्टूडियोज में आए FM लाइफलाइन प्रोग्राम में, आपने वर्ल्ड हार्ट डे पर PGI ने क्या नई खोज की आपके डिपार्टमेंट में वो बताया, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और दिल से जुड़े हुए सवालों के जवाब हमारे श्रोताओं के दिए, साथ में कुछ सवाल हमारे थे, हालांकि बहुत सारे थे, लेकिन प्रोग्राम का समय समाप्ति की ओर है, यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं।
0: थैंक यू।
1: तो साथियों ये तो था आज का FM लाइफलाइन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने, प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का, अपने दिल का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम FM लाइफलाइन, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रां दे।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है।

0: नहीं है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा अप्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: आइए अब सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
5: तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे

चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों में ले जाती है, तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है, तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। इस गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

कटी पतंग फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना। इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: मुझसे ना।
1: साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आंधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

साथियों, आज के संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की, वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरों भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

FM 107 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:00। 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेल्युलॉयड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा।

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिए शाम 5:30 पर। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा शाम 6:30 पर। जयमाला, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:00। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में 10:32 पर।

कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 बजे, रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम गायक, अभिनेता, निर्देशक, गीतकार किशोर कुमार पर केंद्रित रहेगा।

0: एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन दृष्टिकोण के कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है।
2: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी
3: या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

0: श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं, जबकि 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला निदेशक या भागीदार है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को नवरात्रों के दौरान कट्टू के आटे एवं व्रत के दौरान प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे लगातार निरीक्षण करें, जांच के लिए नमूने लें और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। स्वास्थ्य मंत्री ने आमजन से भी अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें और तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं सेवन से बचें। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षाओं एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए जरूरी प्रशासनिक सहयोग करने को कहा है। उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी अपने स्तर पर वर्ष 2027 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करते समय UPSC के कार्यक्रम को ध्यान में रखने के लिए कहा है, ताकि UPSC और राज्य की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में अनावश्यक टकराव ना हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप GRF, सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच ली जाएगी। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समन्वयकों, अधिकारियों तथा स्वयंसेवकों को वर्ष 2025-26 के लिए राज्य NSS पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि वर्ष 2025-26 हेतु कुल 42 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें विश्वविद्यालय NSS कार्यक्रम समन्वय के लिए एक, जिला व पॉलिटेक्निक NSS कार्यक्रम समन्वय के लिए एक, NSS कार्यक्रम अधिकारी के लिए 30। इसके साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। मानसा च कैमिस्ट ने नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा की दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी है। इस बारे जानकारी अनुसार परविंदर सिंह कैमिस्ट की दुकान से कथित तौर पर दवाइया वेचण का विरोध कर गया सी। नशा विरोधी कारकुन अते उसके साथियों नाल बहस दौरान कैमिस्ट ने परविंदर से गोली चलाती, उसनों सिविल अस्पताल ले जाया गया जिथे डॉक्टर ने उसनों मृत ऐलान दिता है। सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर गुरमेल सिंह अनुसार परविंदर सिंह नूं 3 गोलियां लगियां ने। भाजपा श्रोमणी अकाली दल अते कांग्रेस समेत वख वख राजनीतिक पार्टियां दे आगुआं ने इस घटना की निखेधी की है ते विगड़दे कानून पंध लई सूबा सरकार नूं जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान मानसा दे SSP वैभव चौधरी ने कहा कि पुलिस कातल नूं जल्द गिरफ्तार कर लेगी।
1: बलविंदर झोटे नाम के बंदे ते फायर किया गया ते एक्यूज जिहड़ा है उसनू आइडेंटिफाई कर लिया गया ते एक्यूज दे मगर साडी स्पेशल टीम्स लगी हुई है ते मैं सारियां नू आश्वासन दिंदा कि विद इन 24 आवर्स असी जिहड़ा एक्यूज्ड है उहनू अरेस्ट उहदी करांगे ते उहनू एग्जैम्पलरी सजा असी दिवांगे।
0: फाजिल जिले नू भारत सरकार वल्लों स्पॉन्सर की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना तहत इस योजना के 1 साल पूरे होने ते नवी दिल्ली विखे हुई कौमी कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय पद्धर ते इस जिले के काम लई प्रशंसा की गई है। कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई अते पेंडू विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन किया। इस योजना तहत शानदार प्रदर्शन करने लई देश भर के 50 जिलों

0: सुना।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कसौटी फिल्म का गीत, आवाज है किशोर कुमार की।

0: हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं डॉन फिल्म में किशोर कुमार को।
2: अरे भंग का

चकाचक हिरलो पान चबाए। आहा।

0: डॉन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी

स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने ये भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक?
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है नेहा जी जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है श्री राम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: बनकर पीछे छूट जाते हैं, कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं, तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है, लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए, पर आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

0: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
1: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: न साथ आएगा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफ़ी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।

साथी लिख रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

0: किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।
1: तेरा मुस्कान।

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

आपने ट्यून किया है विविध भारती देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट

0: टीवी चैनल्स हैं, हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
0: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
0: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन ले। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। यह एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPI ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। PM डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा

0: नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई
1: है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्वीडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
4: बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे अरे तरे रे तरे रे रे,
5: भूल गया यार,
4: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

जनता के भूत को बंदूक मार दे। यो भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा मस्त।

दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है।

0: दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर, क्यों भाई मैंने ठीक कहा।
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाद

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत गीता दत्त और साथियों की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

0: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कॉन्स और हवन सामग्री।

0: जी बिल्कुल, जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो बस शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना,
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
0: ये 9 दिन आते हैं,
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती है तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना, बल्कि जो पहले था गरबा डांडिया का जो स्वरूप, डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है, तो हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
0: बिल्कुल, और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो।
1: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना, हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है, उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई
0: पे।
1: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
0: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
1: चांदी
0: थी,
1: की सुपारी भी होती थी,
0: चांदी की सुपारी,
1: पायल,
0: अंगूठी, बिछिया, तो कितनी सारी निकलती थी उसमें, मतलब वो टूटी फूटी भी, साबुत भी,
1: उन्हीं सबके बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
0: बिल्कुल
1: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान था, कि वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी।
0: सही बात
1: है ना जी, कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना, लेकिन खुद के लिए।
0: आपने बिल्कुल यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए।
1: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब साथ साथ, हमारे श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने, माँ की अलमारी में छिपे उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविल भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
0: और सखी विशेष में हम बात करने वाले महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी की संस्थापक भी हैं, और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं।
1: सुनते हैं ये गीत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल करा रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।

0: नव दुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और खास बात यह है कि ये चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही, ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही हैं। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा
1: और सुपर माउस,
0: हाँ, फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी। और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करते थे। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके CEO के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए PR मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, विज्ञापन, मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी और इसके बाद साल 2015 में गेट जेलाइज की को फाउंडर बनी और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आईजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहाँ लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मनी फ्रेंड की मार्केटिंग हेड और महिला बनी। वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी। और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों के बाद करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा IDMA 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है
0: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल

0: डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर। फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक,
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दाढ़िया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा दाढ़िया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज्यादा होता है।
4: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए हैं, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी से होता है।
3: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही हैं, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
3: पूरा बाजार भरा होता है।
4: बिल्कुल,
3: इस समय बाजार में जाए तो वही लहंगा, चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
4: बिल्कुल,
3: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती है कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
4: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते।
3: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
4: जी,
3: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूम धड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की यह परंपरा बहुत पुरानी है। यह हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है।

0: जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
1: सब चीज मिक्स हो गया है बिल्कुल
0: और बहुत तेज संगीत। अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, तो ये नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉन्स और हवन सामग्री।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए, वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही है। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है भी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया, इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसके इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका ये गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल, बहुत की, क्योंकि अक्सर जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने की कोशिश की। नहीं,
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काट के डोलती थी कमरे में।
0: माँ की साड़ी पहनने का भी एक अलग सुख।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी तो उसको दोहरा करके
1: साड़ी पहन लेते थे।
0: साड़ी पहननी नहीं आती थी तो लपेट के आईने के सामने देखना और अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार होती थी,
1: और माँ की माथे की बिंदी निकाल के अपने लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था।
0: तो लेकिन उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुंच भी नहीं सकते थे, उनके भीतर उनके मन में क्या चल रहा होता है वो सब के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है,
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने समेटने के लिए।
0: बिल्कुल, और वहां माँ की अलमारी खुलती है, वहां जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहां कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी अपने बचपन की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ के, हम सब के माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी
1: क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी, तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा कर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद की माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा, अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था, संभलता नहीं था,
1: और कई बार और तो फिसल जाए अगर गोला बना भी रहे, छोटे छोटे हाथों से फिसल गया तो दूर तक चला गया
0: वो धागा, धागे के पीछे पीछे

0: फिर मालूम पड़ा उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम रहने दो तो, लेकिन
1: और बड़ा मजा आता था। एक खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह की, जैसे एक सुपारी का आकार या फिर संतरे का आकार,
0: उसको अंगूठे और छंगुनिया में ऐसे करके तिकलना नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी बड़ा मजा आता।
1: देख नहीं सकते तो हम ये जो अभी आपने ये दिखा सकते थे, जी बाकायदा वो हाथ ऐसे हिला के दिखा रहे हैं।
0: मेरे हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे, जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौकी की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता, माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं है। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी नजर आ रहे हैं। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए,
0: जी उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी उनकी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती हैं, और बच्चों की खुशी, पति की ज़रूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती हैं। और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागज़ों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: इन्हीं तरीके से कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेती थी। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाते थे।
1: और ममता जी कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी रखती थी।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते थे। और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही है मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है,
1: मांझा लपेटना भी तिकल्ला जैसा बनाते थे,
0: पतंग उड़ा रहे हैं और मांझा पकड़ो आप संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माताजी ने एक बार अलमारी में

भाई माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो अपने सपनों को

0: भी रखती थी वो।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते थे। और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है,
0: मांझा लपेटना भी तिकल्ला जैसा बनाते थे,
1: पतंग उड़ा रहे हैं और मांझा पकड़ो आप, संभालो, और उंगली कट जाती थी।
0: जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माताजी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे। वे सिक्के उनके नहीं, हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो सिक्के।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं छुपा के रखी।
0: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती थी।
1: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
0: बिल्कुल, और जब वो स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीज़ें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीज़ें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
1: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
0: हाँ, उल्लू सीधा करना। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं। तो हम,
1: अच्छा मंजरी जी, आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है, अभी अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती है, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में रख करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए, और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन हैं। अब एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को है। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
0: हाँ, खर्चे का हिसाब,
1: खर्च का हिसाब और तोहफे के रूप में जैसे शादी विवाह में शगुन के तौर पर देते हैं तो फलाने को इतना रुपया दिया गया।

0: और उनको इतना रुपया दिया जाना है,
1: जाना है। बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: और साथ में किसी मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी और आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे। मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताजा करते हैं।
0: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी, है ना।
1: बिल्कुल, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपने मुहावरे कहा थे।
0: तो आज का विषय भी मुहावरा है
1: जी।
0: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाए। और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने चाहते हैं ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया, फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं। मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें किस तरह।
0: पर ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें। और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखें, कभी भी मुसीबत पड़े तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
0: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। यह है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत जिसका नाम है उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, अब बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का। तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि शायद दिलचस्प बात ये है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूँ। सोया हुआ हूँ, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूँ कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें,
1: अच्छा
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूँ अभी।

0: ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं।
1: बिल्कुल।
0: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू। सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा। जी।
0: तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए।
1: जी।
0: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना।
1: बिल्कुल, आपकी बातों में झलक रहा है।
0: हाँ जी। और मैं निकलता जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं, और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे
1: जी।
0: और सामने रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे।
1: बिल्कुल।
0: किसी तरह इसको मैं इम्प्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैम। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक?
0: पंचायत का ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में।
1: अच्छा।
0: साल 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त, वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे, तो अंकित फ्लैटमेट हुआ करता था।
1: जी।
0: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो। एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा। रोटी का काम आपको सौंपा गया था?
0: नहीं नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे।
1: अच्छा।
0: और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे सो जाना है। तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता, और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा।
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा, छोटा और मोटा रूप। छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी।
1: अच्छा।
0: बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था वो
1: जी।
0: मतलब 1-1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं बहुत मोटा मोटा बनाने लगा। खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते, उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे।
1: अच्छा।
0: सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था, एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रीशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रीशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जा।
1: जी।
0: मैंने कहा ठीक है, एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के, कि यस ऐसा दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर है और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर है, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था।
1: अच्छा।
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास, मुझे लगा कि यार ये क्या ही मतलब, कहा मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए।
1: अच्छा।
0: ये नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं, बहुत समय, बुढ़ापा तक, वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया ऑडिशन। हाँ, दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन

0: नहीं है मुझे, उस समय तक मैं टीवीएफ जानता भी नहीं था। अच्छा। कुछ वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे,
1: पॉपुलर।
0: हाँ जी,
1: बहुत
0: हाँ जी,
1: पॉपुलर।
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है
1: जी,
0: इमरान हाशमी
1: सुनवाते हैं
0: का दौर था ये।
1: सुनवाते हैं गीत।
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस हिसाब से वो स्लो बड़े आराम से इत्मीनान से बोलता है चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी, तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने
0: जी,
1: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये पहलाचा से ऐसी बातें कर रहा या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
0: बस उसमें रमना और बसना होता है
1: बस। तो समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
0: जी,
1: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था
0: जी,
1: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है, आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है, गंदे से हो जाते हैं हर जगह, तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था
0: जी।
1: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं एक दो पेज पढ़ लेता,
0: अच्छा
1: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
0: जी,
1: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है, मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे। क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी।
0: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था, और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले
0: उस पर पता होना,
1: बिल्कुल पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने
0: जी,
1: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना अगर बहुत इन्वॉल्व है, उस तरह की बातें हो रही हैं तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पर मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं, जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया,
0: बिल्कुल, और वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है जिसकी मैं बात करना चाहूं, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल देता है। हाँ, तो इस तरह के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
1: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं तो स्क्रिप्ट में लिखा था।
0: अच्छा,
1: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो है दीपक सर, अरुणाव सर और चंदन सर जो राइटर है, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये

0: करे।
1: जी
0: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है, और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस, अपने फ्रेश होकर के नहा के अपने बेड पे आते हो, तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह, मैंने सीन में
1: संतोष मिलता है,
0: यस,
1: कि आज क्या किया,
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी,
0: मैंने
1: जी, जी,
0: और बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आप वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किन के साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
0: देखिए, एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है, और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं, पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा
1: जी।
0: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी।
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं, और जैसे ही हमारा पैकअप होता है, हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूँ। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे,
1: सिर्फ कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात, फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी,
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है
1: जी।
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूँ, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता है
1: जी जी,
0: है ना
1: जी, बिल्कुल।
0: तो लोग लगा रहे हैं क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए, उनके नजर, उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है, बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूँ, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है, और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में
1: जी।
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे।
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा पहले
1: कुछ
0: चंदन
1: बुरा
0: को
1: लग जाएगा।
0: हाँ, तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो?
1: अच्छा,
0: जैसा पहले थे वैसे ही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था
1: अच्छा
0: आज भी वैसे ही हूँ, घर जाऊं या कहीं भी जाऊं
1: जी,
0: मैं वही कहा कि ये मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है, और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो या जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज़्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते हैं आपके पसंद का एक गीत?
0: बिल्कुल सुनेंगे हम,
1: जरूर बताएं।
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: जिंदगी की,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत, है ना।

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर की. गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ. उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना चाहें? कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल, गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा. हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था.
0: अच्छा, क्यों?
1: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था. यार, मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूंगा. बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो. मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना. और गया बांद्रा में उनके ऑफिस और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो? मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइपकास्ट
1: कर देंगे. और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला, तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में. उन्होंने कहा कि देख चंदन, करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें
0: जी.
1: और इसमें हम और क्या कर सकते हैं. एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेटकीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए. तो करोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा. मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं. राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरे हर बात को मानते चले गए. उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करो.
0: अच्छा.
1: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली और मैंने वो फिल्म किया. और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा. और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, तो एक ऐसा सीन था वहां पर कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ.
0: अच्छा.
1: जबकि मैं दर्द के मारे तड़प रहा था. तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल. बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैप अप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुलाओ. और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी.
0: अच्छा.
1: कि मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो. और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था. तो प्रोडक्शन भागा भागा है, अरे सर आपको उधर ढूंढा जा रहा है. मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम. तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब ये
0: पर्दे पे बचपन से देखा.
1: हाँ जी.
0: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: क्या बात.
1: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी.
0: जी जी बिल्कुल.
1: और मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए.
0: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन शेयर किया है, उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा?
1: एक तो हाँ, मुझे एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गए. उस दिन उनका सीन भी नहीं था, तो मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, मैं नया एक्टर हूँ मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा मैं, मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि मैं जिनको भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में यही चल रहा था.
0: अच्छा.
1: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया. और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ. अरे बहुत सही, क्या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर. बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. और उन्होंने ऐसे पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए. फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा.
0: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत

0: सा सुनवाना चाहेंगे आप?
1: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी।
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: FTI की फिल्म है ये।
0: हाँ।
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी

0: मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा
1: जी।
0: नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब
1: तीन
0: हर,
1: कोस पे भाषा
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बोली बदलती
0: हाँ
1: है।
0: जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा।
1: अच्छा,
0: तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था तो 15 दिन का एक गैप था। मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है। मजे मजे में मैं चला गया था, क्योंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज, ना आपको होटल अच्छा मिलेगा, ना वैनिटी मिलेगी
1: एक
0: कोई,
1: अलग तरह का अनुभव।
0: हाँ जी। बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे लगा कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था। मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं, तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं, क्योंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर। तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी राइटिंग करके यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूँगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूँगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूँगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि, तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से हमने ये शूट किया और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये
1: अच्छा,
0: फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, अब हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल।
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी, हाँ जी,
1: उसके बारे में कुछ बताए। वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है। एक
0: बिल्कुल,
1: तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है, और
0: जी,
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्में इसलिए करता हूं ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है,
1: अच्छा।
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा।
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर। वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है, और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से, किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है
1: अच्छा।
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहाँ पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी,
0: ये
1: हाँ जी,
0: कुछ
1: जी।
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी।
0: क्या अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना, तो मुझे लगा एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है, जैसे ही हमारा रैप अप होता है खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना, बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है। और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं, मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है,
0: अच्छा।
1: इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था, बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे अपने पसंद का काम कर सकता हूँ, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट।

0: अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है,
1: अपनी पसंद रख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले?
0: बिल्कुल, ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीजों को जानना है समझना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है।
1: सीरियस रोल?
0: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कॉमेडी हो या बाकी चीजें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डी निरो और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं
1: जी।
0: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने

0: जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनर और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, उसमें चोर और पुलिस की कहानी है और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं
1: जी
0: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
1: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले और हम उसमें भी आपको देखें।
0: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
1: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं। कई बार प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है, नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहाँ पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास, क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है, खुद से पूछना। दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देख कर मत आइए। ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहाँ पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें क्योंकि आपने देखा नहीं खुद को, जाना समझा नहीं,
1: जी
0: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है। जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
1: बिल्कुल
0: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो।
1: जी,
0: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
1: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी
0: जी
1: तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
0: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ
1: क्या कहना
0: और
1: चाहेंगे?
0: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है। और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो

0: गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था।
1: जी
0: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था। उसमें मैं कई बार उस अमरुद के पेड़ पे अपने ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरुद वही नमक लेके खाता रहता था,
1: क्या
0: है
1: बात
0: ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है,
1: बिल्कुल
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथी बनकर,
0: बिल्कुल,
1: क्या बात
0: रेडियो
1: है,
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है,
0: यस,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट।
1: हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। शाम के 5 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
3: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
2: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते सुरक्षा और तकनीकी परिदृश्य से नई और जटिल चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें बेहतर तैयारी, रणनीतिक दूरदर्शिता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हवलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
2: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर

0: आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीत।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, इस समय हम आपको किशोर कुमार के गायक गीत सुनवा रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं एस टी बर्मन की धुन पर गैम्बलर फिल्म से ये गीत।
1: दिल आज शायर है

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारी श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आपको बता दें श्रोताओं, विविध भारती के मुंबई केंद्र से आज रात

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुन पाएंगे आप। और आज के फनकार हैं अभिनेता अशोक कुमार। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है दो दुनी चार।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं इम्तिहान फिल्म का गीत, किशोर कुमार का ही गाया हुआ

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने किशोर कुमार के गाए गीत सुने। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। 5:30 हुई हैं, लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेरर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से, और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। यह जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से

लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे और हाँ वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना, याद है आपको। ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं। तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT Books PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब

कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते

0: हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
8: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
8: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
10: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
7: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
10: थैंक यू सर। सर,

0: क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ कहो।
0: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
0: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई।

0: you very much.
1: Go ahead, young man.
0: Sir.
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जनसामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
8: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
8: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
8: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
8: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
8: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था।

0: ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਹੂੰ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा क्लाइमेट चेंज हो वाटर गवर्नेंस हो पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे नए अवसर पैदा करे
1: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद संगठित अपराधों नशीले पदार्थों की तस्करी अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया
1: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है UPI पर ग्राहक से

0: व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदांबी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस्की नेदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ।

0: Biles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Biles से मुक्ति पाएं।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान। जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜਨਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
1: नमस्कार ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को युवाओं को नशे से बचाने के लिए व्यापक और समन्वित रणनीति बनाने के निर्देश दिए कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन बताया आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने केरल से कांग्रेस सांसद द्वारा कथित यौन शोषण मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों में स्वच्छता खेल के मैदानों के रखरखाव और जल निकासी के पुख्ता प्रबंधों के लिए बजट जारी किया गया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो सशक्त हो और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश को नशा मुक्त करने और युवा शक्ति को नशे के चंगुल से बचाने के लिए बनाई गई संकल्प सोसाइटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की

0: की। उन्होंने संकल्प में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों को युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए एक व्यापक और समन्वित रणनीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए 7 प्रमुख संकल्पों पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इन संकल्पों में मादक पदार्थ मुक्त थाना क्षेत्र बनाना, तस्कर मुक्त जिला सुनिश्चित करना, नशे की गोलियों से मुक्त दवा की दुकानें, नशे के विरुद्ध परिवार का सहयोग, इलाज युक्त अस्पताल, सुविधा युक्त स्कूल, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए खेल एवं सकारात्मक गतिविधियों के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते समय नशा बेचने वाले व्यक्ति तक सीमित न रहते हुए नशे की आपूर्ति के स्रोतों का भी पता लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संकल्प सोसाइटी को हर माह अपने कार्यों के ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे। नशे की उपलब्धता कम करने, युवाओं को उपचार से जोड़ने और नशे की दोबारा और लौटने की प्रवृत्ति रोकने में मिली सफलता का आकलन भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। आज हिसार में मीडिया से बातचीत में SIR को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा,
1: किसी का भी वोट अगर कट जाता है, अगर वो कहता है कि नहीं मेरा गलत कट गया, तो वो अपना विरोध दर्ज करा करके, आपत्ति दर्ज करा करके वोट बना सकता है। तो ये जो फर्जी वोट है वो काटने के लिए एक प्रक्रिया जो है समय समय के ऊपर कुछ सालों के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाने का काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो किसी सरकार के अधीन काम नहीं करती। आज जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का नैरेटिव जो विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है वो तो गलत है, तथ्यहीन है।
0: श्री गंगवा ने कहा कि विपक्षी नेता कभी भी विधानसभा में या संसद में बात नहीं करते, क्योंकि वहां तथ्य पर बात करनी पड़ती है, इसलिए वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में SIR पहली बार नहीं हो रहा है, विपक्ष झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। श्री गंगवा ने कहा कि यह लगातार सत्ता से बाहर हो रहे विपक्ष की छटपटाहट है। केरल से सांसद द्वारा कथित यौन शोषण के मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जींद में जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तथा आरोपी सांसद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में डॉ. मिड्ढा ने कहा कि केरल में पीड़ित छात्राओं को न्याय दिलाने की बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: विमोल सांसद है, जेएनयू में किस प्रकार से उन्होंने बच्चियों के साथ गलत करने का काम किया पेपरों को लेकर, फिर उनको वहां से रिजाइन दिला दिया गया, तो उनको सांसद से भी रिजाइन देना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल उसके खिलाफ चलने का काम करे, जो बहुत ही शर्मनाक विषय है। तो इसलिए सारी मातृशक्ति आज प्रदर्शन कर रही है।
0: हरियाणा के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर और छत की सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, खेल मैदानों के रखरखाव और जल निकासी के पुख्ता प्रबंधों के लिए बजट जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक कार्यकर्ता नहीं है, वहां इन व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को बजट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ प्रांगण योजना के तहत जारी इस बजट में से प्रत्येक विद्यालय को 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी दशहरे के अवसर पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मेले का आयोजन करेगी। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने आज मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार दशहरे पर भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो सेक्टर 17 से शुरू होकर रेलवे रोड व छोटा बाजार से होते हुए थीम पार्क पहुंचेगी।
3: जो शोभा यात्रा है न्यूकलोनी से निकलेगी, उसके लिए हमने लगभग 150 गेट गए हैं। पहली बार क्षेत्र दशहरा कमेटी की तरफ से इतनी बड़ी शोभा यात्रा कुछ क्षेत्र में निकाली जा रही है। अब की बार रावण 101 फुट का बनाया हमने यहाँ पर, और कुंभकर्ण 80 फुट का है, और मेघनाथ 70 फुट का। कोशिश करी है अच्छा बनाने का, अगली बार और इससे अच्छा उत्सव बनाएंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास

और साझा अवसरों पर टिकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को युवाओं को नशे से बचाने के लिए व्यापक और समन्वित रणनीति बनाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन बताया। आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने केरल से कांग्रेस सांसद द्वारा कथित यौन शोषण मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
1: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
4: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ, ते तू वायरल ना होण दा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV/AIDS किवें नहीं फैलदा। HIV/AIDS नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
6: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
7: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
8: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
9: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
10: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz ते। अगला प्रोग्राम जयमाला। ये प्रोग्राम असी विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।

फौजी साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस जयमाला कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो नया दौर फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफ़ी बलबीर की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं साजन बिना सुहागन। इस फिल्म का गाना आवाज मोहम्मद रफी की, बोल इंदिवर के संगीत उषा खन्ना का।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है परवरिश फिल्म का गाना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरोड़ा अप्लाई।
1: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जयमाला कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक अंतराल के बाद।
1: लाओ जी आज तुहानू दसांगा वायरल ना होने दे तरीके।
2: ओ लोकी ता वायरल होने दे तरीके दस दे आ ते तू वायरल ना होंदा।
1: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी बद जरूरी

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हॉबीज को फॉलो करते हैं
1: हाँ जी
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं
2: हाँ जी हाँ
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया
2: नहीं नहीं अभी नहीं
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है जयमाला लीजिए अब सुनिए जाने दुश्मन इस फिल्म का गाना आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों ने इस गीत को गाया है वर्मा मलिक ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ।
1: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
2: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: हैं विष्णु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: ज्योति की माँ, ए ज्योति की माँ,
2: अरे क्या बात है, हाँ ये इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: आ गई आप।
2: अरे रो क्यों रही हो?
3: मैं क्या कहूँ, ये चिट्ठी पढ़ लो।
2: किसकी चिट्ठी है ये?
3: तुम्हारी लाडली बेटी की।
2: ज्योति की चिट्ठी? देखो, पूज्य डैडी, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, ये घर छोड़ रही हूँ, शाम के पास जा रही हूँ, हम विवाह कर रहे हैं, चाहती थी आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता मगर माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। खैर अब जा रही हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को भुला कर क्षमा करें, आपकी बेटी ज्योति।
3: अब तो आ गया ना विश्वास। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे ये लड़का एक आंख नहीं पाता, ज्योति के साथ उसका मेल मिलाप ठीक नहीं, मगर तुम हमेशा उसके गुणगान करते रहे। आज उस चित्रकार ने हमारे मुंह पर काले पोती है काले।
2: हाँ, शाम को इतना ऊंचा आदमी नहीं समझता था, अगर वो मुझसे मेरी ज्योति का हाथ मांगता तो मैं हंसी खुशी ज्योति का विवाह उसके साथ कर देता।
3: मैं तो उस निठल्ले के साथ अपनी फूल सी बच्ची का विवाह कभी ना करती। उसके पास रखा क्या है, न पहनने का ढंग, न बोलने की तमीज।
2: नहीं ज्योति की मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं शाम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके जीवन का उद्देश्य है सादा जीवन, उच्च विचार। वो अपने बाप के पैसे को छूना तक नहीं चाहता। अरे अपने पिता से उसकी लड़ाई उसूलों और आदर्शों की है।
3: वो इस तरह छुप कर खत लेकर क्यों गई? मुझसे न सही, तुमसे तो अपने मन की बात कह सकती थी। तू आ गई माँ बाप के मुंह पर कारिक लगाकर।
2: कौन? ज्योति, इधर आ बेटी, इधर आ।
4: डैडी, डैडी।
3: कर्म फूटी, तुझे शर्म नहीं आई? इस घर की इज्जत नीलाम करने गई थी
4: माँ।
3: अरे वो लफंगा जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ, तेरा क्या होगा?
2: तू चुप भी रहेगी, गलती इंसान से होती है। वैसे ज्योति अब बच्ची नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपना बुरा भला खुद सोच सकती है।
3: जो बेटी माँ को अपना दुश्मन समझे, ऐसी लड़के के होने से तो बे औलाद भली थी।
4: मम्मी अगर ऐसी बात थी तो तुमने पैदा होते मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये खाओ ये ना खाओ, ये करो ये ना करो, यू उठो यू बैठो, जैसे मैं बच्ची हूँ, जैसे मुझे जीने का शौर ही नहीं हो।
3: देखो तो छोकरी की ज़बान कैंची की तरह चल रही है, कैंची की तरह। शौर इतना है तो घर की इज्जत नीलाम करने क्यों गई थी?
4: घर की इज्जत? घर की इज्जत क्या होती मम्मी? माँ और बाप 24 घंटे अपने कामों में व्यस्त रहे, बेटे की क्या इच्छाएं हैं तमन्नाएं हैं ये जानने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं। तो बेटी क्या करे, घर की चार दीवारें से अपना सर फोड़े, दिल की बात दीवारों से करे?
3: नहीं नहीं, घर छोड़कर निकम्मे के साथ भाग जाए, माँ बाप के मुंह पर काले पोते हैं।
2: ज्योति की माँ चुप भी कर, ज्योति से बात करने दो मुझे, जाओ मेरे लिए एक चाय का कप ले।
3: हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के पीछे चली जाती हूँ।
2: हाँ ज्योति बेटी, मुझे बता तू क्या चाहती है, मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ।
4: पापा कहना क्या है, मेरा फैसला तो आप जानते हैं।
2: मैं जानता हूँ बेटी, तू शाम से विवाह करना चाहती है ना?
4: हाँ पापा।
2: पर बेटी इस संबंध के नतीजे के बारे में भी तूने सोचा होगा।
4: नतीजों से आपका मतलब? मैं समझी नहीं पापा।
2: यही कि विवाह के बाद एक घर की जरूरत होती है और घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम। क्या तू शाम की तरह सादा जीवन जी सकेगी?
4: मैंने शाम को करीब से देखा है पापा, उसे समझा है, मैं हर हाल में उसके साथ खुश रहूंगी, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। आपने कभी शाम को समझने की कोशिश ही नहीं की पापा। शाम की तरह दुनिया में कितने लोग हैं जो औरों की सोचते हैं, वो हर शाम गरीबों की बस्ती में जाके उनके दुख दर्द सुनता है, वो उनके गम आंसुओं पीड़ा वेदना में हिस्सा बटाता है, उनके बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए खुशियां जुटाता है। अपने लिए तो सब जीते हैं पापा, औरों के लिए जीने वाले मुश्किल से मिलते हैं।

0: श्याम को तो इतना जानती है, फिर भी तूने बुजदिलों की तरह भागने की जल्दबाजी क्यों की?
1: मैं डरती थी पापा, मैं डरती थी कि...
0: डरती थी? किससे?
1: मुझे मम्मी का डर था, मुझे डर था वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी।
0: हाँ, वो जल्दी से रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, वो पुराने विचारों की एक सीधी सादी औरत है, लेकिन वो भी इंसान है, प्यार से उसे समझाती तो वो भी मान जाती। आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, तेरा सुख ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है।
1: पापा, उनकी बातें सुनने के बाद भी आप कहते हैं कि वो मान जाती? श्याम के लिए उनके दिल में जो नफरत है पापा, आप...
0: श्याम के लिए उसके दिल में नफरत नहीं, ईर्ष्या है। उसके लाडली बेटे को उससे भी ज्यादा प्यार करे, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। फिर तूने श्याम के बारे में अपनी माँ को कभी हमराज भी नहीं बनाया, इसीलिए उसे लगा कि ये लड़का उसकी इकलौती बेटी को उससे दूर कर रहा है। वो अनजाने में श्याम से चिढ़ गई। अगर तू अपनी माँ से श्याम को मांगती तो वो तेरी खुशी के लिए खुश श्याम की खुशामद करती। बेटा, वो गर्म मिजाज की जरूर है, पर तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तूने उसे समझने में गलती की है बेटा।
1: हो सकता है पापा, हो सकता है मैंने ही मम्मी को समझने में गलती की हो।
0: तूने मुझे भी गलत समझा है
1: पापा, ये आप क्या कहते हैं?
0: इस तरह घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे इस संबंध में कहा होता।
1: मैंने कहा ना, मैं डरती थी पापा, मैंने सोचा कहीं माँ के दबाव में आके आप इनकार कर बैठे तो।
0: तू बिल्कुल भोली है, तूने ना अपनी माँ को समझा और ना अपने पिता को पहचाना। और बेटी, मैं तो कहूंगा कि तूने श्याम को भी गलत समझा है।
1: पापा,
0: तू जब घर छोड़कर श्याम के पास गई तो फिर लौट क्यों आई? तुझे श्याम ने वापस भेज दिया ना?
1: हाँ, मुझे श्याम ने वापस भेज दिया। उसने कहा मुझे इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था।
0: उसने शादी के लिए इनकार तो नहीं किया ना?
1: नहीं नहीं पापा, उसने कहा ज्योति, मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन इस तरह छुप कर, घर से भाग कर नहीं, तुम्हारे माँ बाप की अनुमति लेकर। उसे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग अनुमति दे देंगे। उसने मुझे वापस भेज दिया पापा। वो आ रहा है आपके पास, आप लोगों की अनुमति लेने।
0: ज्योति, मैं जानता था कि श्याम एक आदर्श लड़का है, वो बड़ों का आदर करना जानता है। आज अपनी मर्यादा की वजह से वो मेरी नजरों में बहुत ऊंचा उठ गया है।
1: पापा,
0: अरे श्याम, आओ बेटा आओ।
2: पापा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ।
0: क्षमा? कैसी क्षमा?
2: अनजाने में ज्योति ने जो गलत कदम उठाया उससे आपको कितना कष्ट पहुंचा होगा ये मैं समझ सकता हूँ।
0: तुमने मेरे घर की इज्जत बचा ली बेटे, वरना लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कितनी बदनामी होती है हमारी।
2: मैं जानता हूँ पापा, इसलिए आज मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ।
0: मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। पर श्याम
2: जी,
0: कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ।
2: कहिए पापा।
0: क्या तुम समझते हो ज्योति एक अच्छी पत्नी साबित होगी?
2: हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा।
0: लेकिन बेटा, सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं कटता।
2: जी, मैं समझा नहीं।
0: ज्योति एक ना समझ लड़की है, घर गृहस्थ कैसे चलाया जाता है इसे उसका कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि उसे खाना पकाने, घर के कामकाज का भी शऊर नहीं है।
3: हाँ हाँ, वो जाहिल है, गवार है, क्योंकि उसकी माँ एक फूहड़ औरत है। उसने अपनी इकलौती बेटी को कुछ नहीं सिखाया, यही कहना चाहते हो ना?
0: अरे ज्योति की माँ, ये
3: मेरी ज्योति हजारों में एक है, हजारों में, क्या नहीं आता उसे? हाँ, बस तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है और अब कुछ दिनों से वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी।
1: माँ
3: छोड़ मुझे। क्षमा, मैं तेरी कौन होती हूँ? मैं तो तेरी दुश्मन हूँ।
1: माँ,
2: माँ जी, कभी कोई माँ भी अपने बच्चे की दुश्मन होती है?
3: तू मत बोल मुझसे। तूने ही मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया, तेरे ही कारण वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। तेरे लिए वो आज मुझे छोड़ कर जा रही है, मुझे अपनी माँ को छोड़कर जा रही है।
2: मां जी, ये इसकी नादानी थी, इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया। मुझे ज्योति से ज्यादा आपका प्यार चाहिए, माँ का प्यार। सच कहता हूँ मां जी, साल दो साल का था मैं जब मेरी माँ का

0: पास हो गया। मुझे तो उसकी सूरत भी याद नहीं। माँ के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा मैं।
1: सुना है तेरा पिता शहर का बड़ा व्यापारी है, फिर तो।
0: माँ जी, जिस बच्चे की माँ नहीं होती ना, उसका बाप भी सौतेला हो जाता है। उन्होंने मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा। उनके लिए तो पैसा ही औलाद है और पैसा ही भगवान।
1: पर पैसे के बिना गृहस्थ चल भी तो नहीं सकता, यह भी तो एक सच्चाई है। इस तरह से आंखों को बंद नहीं करके बैठा जा सकता है। तुम्हारे पास है क्या?
0: मेरे पास है माँ जी, आप जैसी माँ का आशीर्वाद। मेरी पूंजी है दया, करुणा।
1: छोटी को बड़े नाजू से पाला है मैंने।
0: माँ जी, सीता भी तो राजा जनक की बेटी थी।
2: और फिर श्याम उसे ब्याह कर वनवास नहीं ले जा रहा है। वो सादा जीवन बिताना चाहता है और सादगी कोई गुनाह नहीं है।
1: मैंने ज्योति के विवाह को लेकर कितने सपने बुने थे।
2: ज्योति की माँ, अब तुम्हें हालात के मुताबिक अपने को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे।
0: काश मेरे डैडी भी आपकी तरह होते।
2: तुम्हारे डैडी को मैं समझाऊंगा। मैं लड़की वाला हूँ भाई।
0: नहीं, वो आपके साथ सौदेबाजी करेंगे, हजारों रुपए दहेज में मांगेंगे। उन्हें जिंदगी में केवल पैसा चाहिए, पैसा। पैसे के लिए वो मुझे भी नीलाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
2: मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। तुम्हारे पिताजी जितना दहेज मांगेंगे दूंगा।
0: नहीं पापा, मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें विवाह का निमंत्रण भेजूंगा। चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद पा सकूं।
2: हम शादी धूमधाम से करेंगे।
0: नहीं पापा, नहीं, मैं आपको कोई फजूल खर्ची नहीं करने दूंगा।
2: अच्छा चलो, एक बढ़िया सी पार्टी कर देंगे। क्यों ज्योति की माँ?
1: मैं तो दुश्मन हूँ इनकी, मुझसे क्या पूछते हो?
0: अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये शादी नहीं करूंगा माँ जी। माँ को नाराज करके मैं कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहता।
1: लेकिन मैं फकीरों की तरह रूखी सुखी शादी नहीं करूंगी। हाँ, कम से कम बारातियों को मीठा नमकीन तो देना ही होगा।
0: पर जानती है माँ जी, मेरी बारात में कौन लोग आएंगे? मेरी बारात में होंगे बस्ती के गरीब लोग, अनाथ बच्चे। मेरी रिश्तेदारी तो उन्हीं लोगों से है माँ जी।
2: लेकिन शाम,
1: आपको बीच में बोलने की बुरी आदत है, चुप रहिए।
2: पर ज्योति की माँ, शादी में रिश्तेदारों को?
1: रिश्ते खून के नहीं, प्यार के होते हैं। आज ये बात मुझे श्याम बेटे ने अच्छी तरह समझा दी। मेरी अपनी जाई ने मुझे नहीं समझा, मगर ये इसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, उससे तो मेरा दिल भर आया।
2: अच्छा ही हुआ, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
1: आप चुप रहिए, दामाद और सास के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं?
2: जी मैं इस दामाद का ससुर और इस सास का पति और इस घर का मालिक।
1: मालिक? वो किसकी इजाजत से?
2: इस घर की मालकिन, यानी तुम्हारी इजाजत से।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटिका रिश्ते प्यार के। विष्णु भाटिया के लिखी इस नाटिका को निर्देशित किया गंगा प्रसाद माथुर ने। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले लव यात्री इस फिल्म का गाना देव नेगी और योयो हनी सिंह की आवाजों में, शब्बीर अहमद योयो हनी सिंह और होमी डिल्लीवाला का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक, जो हम विविध भारती के अपने मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं आपके लिए। अगला गीत आप सुनेंगे, उससे पहले एक सूचना आपको दे दें कार्यक्रमों संबंधी। FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए कल दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हम आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। कल

हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। तो कल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत की जाएगी। इस रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में आप कोई भी सवाल करना चाहें, बातचीत करना चाहें, तो टेलीफोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। याद रहे, कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर और आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 3:30 से लेकर 4:00 तक।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वी आर फैमिली। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, इरशाद कामिल और अन्विता दत्त के बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक हम आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारा कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जागरूकता और उपचार। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। हमारे टेलीफोन नंबर नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे।

ब्रेक का समय पूरा हुआ और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उड़ान फिल्म का गाना अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: नाचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
3: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
2: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। तो बात पक्की, ये फिल्म का नाम है। प्रीतम राणा और सोहम की आवाजें हैं, सईद कादरी के बोल हैं और प्रीतम का संगीत है।

श्रोताओ, हम आपको बताने चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक हम आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारा कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जागरूकता और उपचार। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। हमारे टेलीफोन नंबर नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने

0: मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर ना दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ. मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
1: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक

0: सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
3: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवामी शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
5: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
6: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
7: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामले मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
5: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी

0: मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन

0: प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया है कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेनदेन निशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 पैसे पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना है सुहाना सफर। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब ज...

टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारा कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जागरूकता और उपचार। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। हमारे टेलीफोन नंबर नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम मस्ताना।
1: जब जब हम तुमको मेरी है हेर छेना मन मोर

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जीवन मृत्यु इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, जवां मोहब्बत, ये फिल्म का नाम, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
4: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होण दा।
3: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक हम आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारा कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जागरूकता और उपचार। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे।
1: ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार पर।
2: मैं बन का पंछी बन

0: अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुले के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के चार बच्चे थे, इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए।
1: बाजू

अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई जो हिमांशु राय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के अपने काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग

0: से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नकर करते रहे पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई।
1: रेल गाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले

0: मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुत्तल डिंडिगल डिंडिगल कुत्तल, पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मछली पट्टम, ओंगोल नदी गोल नदी गोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धड़क धड़क ब्रेक सड़क धड़क धड़क ब्रेक सड़क, यहां से वहां वहां से यहां यहां से वहां वहां से यहां, झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक झुक।
1: जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देविका रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी यह फिल्म भी काफी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे।

बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए, उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी।

अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आजाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा।

1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी।

सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि।

दोस्तों अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था।

अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीप में।

1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उमर दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीजा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह।

0: मारी दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जा रे मैं हारी जा जा रे मैं हारी जा जा रे।
1: 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ओपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो, इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनूप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि बीआर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान। और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज

ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलय

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज़, जानी पहचानी सी आवाज़। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी एक एहसास है जैसे है वो कहीं आसपास। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।
1: लगी

दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो, कहीं दूर चले, चले वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलकें झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहला उठे, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुम्हें ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हें ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी तो जगमगा उठी वो तस्वीरें जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलते हुए ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था, दिखाई थी तमाम तस्वीरें एक दूसरे को, जब यूं ही सड़कों पर खाली बेमकसद चलते रहते थे, याद आ गए वे पल जब यूं ही बैठे चुपचाप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।

दिलों की प्रीत जमाने के लिए कहानी बन गई। बहती हुई नदी का किनारा, लहरों का खेल करता समंदर, आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, दो चाहने वाले के हमदम बन गए। उनके बोलने से कायनात खनक उठी, उनकी हंसी बहता हुआ झरना बन गई। उनसे गुफ्तगू जैसे फूलों का खिलना हो, उन्हें देखना जैसे चांद को निहारना हो।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत नमस्कार
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरती
1: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक हम आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारा कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जागरूकता और उपचार। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। हमारे टेलीफोन नंबर नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। याद रखिएगा ब्रेस्ट कैंसर रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे।
2: अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: असी आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz से। पेश ने मुख्य प्रदेशक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की समूहिक विकास अते सांझे मौकियां ते टिकी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों नौजवानों नशियां तो बचाने लई एक व्यापक अते तालमेल वाली रणनीति विकसित करने के निर्देश दिते। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह अंगवा ने विशेष तीबर समीक्षा SIR संबंधी विरोधी धिर के दोषों नूं तत्थां तों परे दसदियां खारज कर दिता है। कहा विरोधी धिर लोकां नूं गुमराह करन दा यतन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने अज केरल के एक कांग्रेसी संसद मैंबर द्वारा कथित जिनसी शोषण के मामले नूं लैके कांग्रेस पार्टी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के सारे सरकारी स्कूलों में सफाई खेड के मैदान की देखभाल अते सही निकासी लई बजट जारी किया गया।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक हम आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारा कल का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जागरूकता और उपचार। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वेणु सिंगला। हमारे टेलीफोन नंबर नोट करें 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर रोग की जागरूकता और उपचार के बारे में कल दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे।
3: यार, ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
4: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
3: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
5: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य

0: देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित संकटों का सामना करने में सक्षम विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 MHz से 11:05 हो चुके हैं। हुण साडी अज दी सभा खत्म होंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।